0: 106.3 FM, Gio Bindas.
1: चांदनी

अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

Uplift 106.3 FM, Geo Bindas.

listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: दस मॉर्निंग अर्जुन तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

अरिजीत सिंह की आवाज में सोनू की टीजू की स्वीटी से तेरा यार हूँ मैं। ब्यूटीफुल ट्रैक, खूबसूरत शुरुआत एकदम शो की। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। तनीष आगे जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर। अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान। सितंबर 23 वेंसडे का दिन, दिल खुश हो रहा है क्योंकि वीकेंड नजदीक आ रहा है।

मेट्रो इन दिनों से ये खूबसूरत गाना I can't stress enough कि 90s का जो इंडी पॉप सीन था वो अलग ही था. उस टाइम पे जो रिमिक्सेस भी आ रहे थे वो इतने बढ़िया थे कि यू नो यू डू नॉट फील क्रिंज कि भाई इतना आइकॉनिक गाना था क्यों उठा लिया अभी की तरह.

ऑल दीज अमेजिंग ट्रैक्स आर लाइंड अप फॉर यू. और भी बहुत सारी सरप्राइजेस हैं बीच में, ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन आपको पता है शुरुआत तो आपसे ही होगी मेरी जान. तो फटाफट से आ जाओ, एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेज दो मुझे 3311063 पर. फिलहाल भेज रही हूँ अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज़ में कॉकटेल टू से तुझको. स्टे ट्यून्ड एंड जियो विंदस.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनिषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: तनिषा
1: विशाल मिश्रा की आवाज में मेट्रो इन दिनों से मन ये मेरा सुंदर गाना ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM तनिषा है आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है। यहाँ पर कुछ मैसेजेस आए हैं जरा चेक आउट करते हैं। नाजनी जी कहती हैं मे दिस मॉर्निंग बी द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। गुड मॉर्निंग, मे दिस वन बी द वन ऑफ द बेस्ट, यू नो बाकी सब भी बेस्ट होनी चाहिए यार, एक से कैसे चलेगा ना जी ना। संधु जी का मैसेज भी है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नो मैटर व्हाट नॉक्स यू डाउन इन लाइफ गेट बैक अप एंड कीप गोइंग, नेवर गिव अप, ग्रेट ब्लेसिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट परसिवियरेंस, हैव अ ब्लेस्ड डे। हरपाल संधु फ्रॉम जिक्रित दुखन जियो बिंदास। हाँ जी एकदम सही बात है, व्हाट मेक्स अस ह्यूमन यार, दैट वी कीप फॉलिंग डाउन बट वी नो दैट वी कैन गेट अप एज वेल, और वो स्पिरिट कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, कभी भी किल नहीं करनी चाहिए। वी हैव जुल्फी जी का मैसेज, ही सेज अल्फाबेट ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी विच इज एब्सेंट इन यस्टरडे अवेलेबल इन टुडे एंड थ्राइस इन टुमारो, नेवर लूज होप। वाओ दैट इज ब्यूटिफुल एक्चुअली। मदन यादव जी का भी मुझे गुड मॉर्निंग आया है, गुड मॉर्निंग जी क्या हाल चाल है, एंड ऑल दोज पीपल हु हैव आइदर जस्ट गॉटन अप, अभी उठे हैं, रेडी हो रहे हैं काम के लिए, या फिर निकलने लगे हैं, या फिर निकल चुके हैं। जब भी मौका मिले मुझे गुड मॉर्निंग भेज देना, मुझे पता चलना चाहिए ना कि आप मुझे सुन रहे हैं। एंड आई विश यू ऑल एन अमेजिंग डे, सब बढ़िया हो एज पर योर प्लान, और अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि लाइफ है यार, होता रहता है, कोई बात नहीं। सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो बिंदास। कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: Tanisha.
1: आतिफ असलम और अनीशा चुनौय की आवाज में अजब प्रेम की गजब कहानी से तेरा होने लगा हूँ। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM, अनीशा है आपके साथ। बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर और गौर फरमाइएगा, एक बहुत ही जरूरी बात करने जा रही हूँ। समोसे में आलू है, पता नहीं लाइफ में क्या चालू है, बट आई नो थिंग्स विल गेट बेटर क्योंकि ऊपर वाला दयालु है। हाँ जी, एंड आई ऑल्सो नो दैट आई एम गोना कीप मेकिंग एफर्ट्स टू यू नो मेक इट बेटर, कि चीज़ें और बेहतर हो जाए। गिव अप नहीं करने का है, वो ऑप्शन रखना ही नहीं है। एंड इट इज़ ओके, यू नो वट एवर इज हैपनिंग इन लाइफ वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जा रहा है, तो लेट्स ट्राई एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ वट एवर द सिचुएशन इज राइट नाउ। सब बढ़िया चल रहा है तो टच वुड ऐसा ही रहे, और अगर थोड़ा ऊपर नीचे है तो जल्दी सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। हिम्मत नहीं हारना है बस, ठीक है। सेंडिंग अ ब्यूटिफुल ट्रैक श्रेया घोषाल और सोना मोहपात्रा की आवाज़ में, बहारा। स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: सुनो आदि, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: नमस्कार वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
1: जैकी श्रॉफ
2: रेडियो 106.3
0: जियो बिंदास। ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

Danisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Danisha hai aapke saath. Bindas mornings chal rahe hain abar. Kinda liking it now. मतलब काफी humidity कम हो चुकी है, जो एकदम ही crazy वाला भपका लगता था बाहर निकलते ही, वो नहीं हो रहा है अब. Also, Met Department ने भी बता दिया है कि भाई autumn officially आज से, that is 23rd September से शुरू हो चुका है. तो बढ़िया मौसम एकदम नज़दीक है और फिलहाल temperature is 31 degrees and it feels like 40 degrees. Hopefully और कम हो जाएगा feeling वाला. एंड द हाइएस्ट आज का 38 जाएगा, लोएस्ट होगा 30. अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरह आवाज़ ना हो जाए आपकी, इस बात का ख्याल रखें. और प्लीज़ प्लीज़ कोल्ड से जितना दूर हो सके रहें, मतलब यू नो हैबिट्स के बेसिस पे दूर रह पाएंगे, ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं. सो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लीजिए, पानी पीजिए, पर ये मत कीजिए कि बाहर गर्मी से निकल कर आ रहे हैं और ठंडा पानी पी लिया है. नहीं, थोड़ा सबर करने का मेरी जान. ऑल्सो एसी के नीचे एकदम खड़े हो जाना क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, माई गॉड कांट बेयर इट. नो, डोंट डू दैट. आई डिड दैट एंड लुक हियर, आई एम सफरिंग. इट इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी. एंड द प्रॉब्लम इज कि ठीक है, वायरल होता है, फ्लू होता है, वो 4-5 दिन में चला जाता है, बट दिस कोल्ड इट स्टेज भाई. इसको तो पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, एकदम क्लिंगी है यार, जा ही नहीं रहा है. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और सुनते रहिए रेडियो ऑल थ्री बिंदास. Radio

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबुहमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में जवान मूवी से चले आओ ऑन रेडियो 106.3 FM. तरीशा है आपके साथ, बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर.
1: अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या, अमन जब साथ है तेरे, अमन को इंतजारी क्या.
0: अगर अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो लॉस में हो आप.
2: घर मोरे परदेसिया
0: के टाइम पे क्या क्रेजी हो गई थी आलिया, बट हर जगह जाके इस पे डांस कर रही थी. बट इट वाज ब्यूटीफुल आल्सो दैट शी वाज सो एक्साइटेड अबाउट इट.

ऐसे रूह तक चले जाते हैं. दिस इज वन ऑफ देम. या आज दिनचर्या की बात कर रहे थे, लुंगी डांस की नहीं. वरना बोलोगे तनिषा को क्या हो गया है. वेल फिलहाल वक्त हो गया है. सो मेरा आज का सवाल लेम जम्स का ये है कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एस्केलेटर. एस्केलेटर का ऑपोजिट क्या है ये आपने मुझे बताना है. 3311 1063 पर. यू कैन ऑल्सो कॉल 4444 1063 पर. हिंट ये दे देती हूँ कि एस्केलेटर को थोड़ा सा ऐसे ब्रेक करो वर्ड को एंड देन यूल गेट द आंसर. जल्दी से बता दो. इंतजार करिए और सुनते रहो रेडियो ऑल ऑफ 3 बिंदास.

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
4: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूं जैकी श्रॉफ, रेडियो ऑलिव, बोलो बिंदास।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: श्रेया घोषाल की आवाज में घर मोरे परदेस या कलंक मूवी से ओनली ऑन रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम तनीषा के साथ हैं आप बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर तो मैंने सवाल पूछा था कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एस्केलेटर एंड आई मेंशन कि इस वर्ड को ब्रेक करिए आपको जवाब मिल जाएगा लेकिन दिमाग लगा दिया है नहीं यार पल्लव जी का मैसेज आया है कि एंटोनिम ऑफ एस्केलेटर इज स्टेयरकेस और स्टेयर्स टेक्निकली यस पर लेम सवाल का लेम जवाब यहाँ पे ये लागू नहीं होता एंड देन वी हैव मैसेजेस फ्रॉम शिखा इज देयर देयर इज मुद मड आई डोंट नो देयर फैजल जी इज देयर संजू का मैसेज है ईजी का मैसेज है और मोहम्मद है साथ में सैदा का मैसेज है देन देयर इज अदील देयर इज साइमन एंड गुड टू गो ये कैसे नाम लिख देते हो यार गुड टू गो का भी मैसेज है एंड दीस पीपल हैव गिवन द करेक्ट आंसर सो व्हेन यू ब्रेक द वर्ड एस्केलेटर इट इज एसके एंड लेटर सो इसका ऑपोजिट हो जाएगा एसके सून यस एसके सून पल्लव जी को मुझ पर गुस्सा जरूर आ रहा होगा आई एम 110% श्योर अबाउट दिस इसीलिए एक बढ़िया गाना भेजू सुन रहे रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है
2: जबरदस्त है

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
2: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज़ फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
3: सितंबर 24th एट हॉलीडे इन दोहा। रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
2: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरोहर मिस मत करना।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं। सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. एंड yesterday was Google Cloud Summit 2026, जो कि QNCC में हुआ. एंड मोर देन 2000 टेक्नोलॉजी लीडर्स विद देयर डेवलपर्स पार्टनर्स सभी ने अटेंड किया. और जो फोकस था, एज वी नो, इट वॉज अबाउट AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और कतर का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में. पर मेन फोकस था एजेंटिक AI पे. जी हाँ. नाउ व्हाट इज एजेंटिक AI? आई विल टेल यू. सो बेसिकली हम जब AI से सवाल पूछते हैं वो हमें जवाब दे देता है. दैट्स इट. नाउ एजेंटिक AI डज द इंटायर वर्क बिहाइंड इट. यू गिव इट अ गोल. आप उसको एक गोल देते हो और वो प्लान करता है सारे स्टेप्स और वो सारे टास्क परफॉर्म करता है और फिर एंड में वो आपको रिपोर्ट भी देता है. सो बेसिकली अपना सारा काम डेटा निकालने से, उसको एनालाइज करने से, यू नो, डिफरेंशिएट करने से, उसको सेग्रीगेट करने से लेकर सब कुछ, इवन टू सेंडिंग द रिपोर्ट ऑल्सो, यू कैन यूज एजेंटिक AI. सो उसके ऊपर मेन फोकस था. एंड साथ में कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि MCIT इनोवेशन लैब, दैट इज कतर्स मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है MCIT इनोवेशन लैब, जो कि डेवलपर्स, रिसर्चर्स और बिजनेसेस को एक प्लेस देगा टू टेस्ट एंड डेवलप AI सॉल्यूशंस. प्रोजेक्ट्स जो है वो पोटेंशियली एक आइडिया से निकलकर प्रोटोटाइप में, प्रोटोटाइप से निकलकर फुल बिजनेस डिप्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं यहाँ पे. और जो लैब है, इट इंक्लूड्स AI स्टूडियो विद मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज एंड इंटीग्रेट्स विद Gemini एंटरप्राइज. देन 50,000 प्लस AI लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी अनाउंस की है. सो गूगल क्लाउड और कतर डिजिटल अकेडमी ने लॉन्च किया है गूगल क्लाउड नेशनल स्किलिंग प्रोग्राम. एंड इसमें जो है मोर देन 50,000 लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है बाई 2030 नेशनल विजन के साथ चलते हुए. एंड जो ट्रेनिंग है इसकी, वो टारगेट बेसिकली है जनरल वर्क फोर्स के लिए. आपको बेसिक AI स्किल्स आनी चाहिए, आपका काम बहुत ज़्यादा फीजिबल और आसान हो जाता है. एग्जीक्यूटिव्स के लिए स्ट्रैटेजिक AI नॉलेज होना चाहिए और जो डेवलपर्स हैं उनके लिए एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग भी है. नाउ ऑल एंड ऑल, इफ यू सी गूगल क्लाउड समिट 2026 में कतर ने काफ़ी आराम से और यू नो सटली बता दिया है कि भाई हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे AI के साथ, हम इसे एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं हमारे डे टू डे लाइव्स में. और यू नो गवर्नमेंट, एजुकेशन सेक्टर, टेलीकॉम, मीडिया, हेल्थ केयर, and you name it, we are using it there. And that is such a commendable thing, and it all aligns with the Qatar National Vision 2030. So yeah, kudos to Qatar and sending Lunga Dance in the voice of Hani Singh. Stay tuned on Jio Bindaas.
1: Eel Yunga.

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसेराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसेराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
3: शर्ट लेने का प्लान है और चाहिए प्रीमियम ब्रांड
4: तो नेस्टोग्राफा में मिल रहा है जबरदस्त ऑफर दो शर्ट सिर्फ 59 रियाल में या चार शर्ट जस्ट 99 रियाल में और हाँ जहाँ एक शर्ट के लिए आपको 59 रियाल देना पड़ता है वहीं चार शर्ट्स अब सिर्फ 99 रियाल में ओनली विद गराफा शॉपिंग डेज
3: तो इस वीकेंड अकेले मत जाना अपने फ्रेंड्स को भी साथ ले जाना नेस्टो हाइपर मार्केट गराफा
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: तनिषा
1: राज साहब की आवाज में बड़ा सुंदर गाना लव आजकल मूवी से आज दिन चढ़े ऑल योर रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स सिंक में बात करते हैं गोल्ड की जी हाँ सो कतर ने जीत लिया है गोल्ड एट स्काई डाइव वर्ल्ड कप सीरीज यस कतर का जो नेशनल स्काई डाइविंग टीम है अल हदफ दे हैव वन गोल्ड इन द टीम इवेंट एट SWCS लोकार्नो फाइनल इन स्विट्जरलैंड सो कतर ने कम्पीट किया अगेंस्ट 35 टीम्स रिप्रेजेंटिंग 16 कंट्रीज एंड द कतरी टीम फिनिश्ड फर्स्ट आफ्टर डिलीवरिंग अ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन एंड दैट इज सो कूल You know, this result, it adds another international gold medal to Qatar's achievement in air sports. And it also highlights the development of skydiving and aerial sports in Qatar. And in general sports ke liye, you know, jitni cheeze ki ja rahi hai, jitne initiative government lekar aa rahi hai, it is absolutely amazing. Along with that, Abdullah Rashid ne jeet liya hai second medal in karate at Aichi Nagoya 2026 Asian Games. Toh bhai, jahan bhi pahunche hain hamare Qatar ke khiladi, har jagah बाजी ही मार रहे हैं एंड दैट इज कमेंडेबल दैट इज सच अ प्राउड फीलिंग इसी बात को सेलिब्रेट करते हुए एक बढ़िया गाना सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: यू घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जारों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
3: Calling all visionary brands and business owners. If you create innovative products or services for children, then your biggest stage is ready.
4: Alshark Media Management proudly presents the grand third edition of Kids Expo Qatar 2026
3: at QNCC Hall No. 5.
4: This is your ultimate chance to put your brand in the spotlight and connect directly with thousands of families.
3: From breakthrough toys to educational services, showcase your business on Qatar's biggest platform. Opportunities like this don't wait. Book your exhibition space today and take your business to new heights. Kids Expo Qatar 2026, where your innovation meets the future.

दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। मॉर्निंग।

0: बिंदास मॉर्निंग।
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी। सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
4: This is Vani Bhanushali.
5: Hey, this is Liana De Cruz.
6: This is me, Ritik Roshan.
7: Hi, I'm Alia Bhatt.
8: Hi, I'm Vivekanand Oberoi, and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: तनिषा
1: आसिफ अजहर और जैनब की आवाज़ में सुपरस्टार मूवी से गलत फहमी, खूबसूरत गाना और काफ़ी सारी गलत फहमियाँ थी मेडिकेशंस को लेकर, उसके बारे में बात हुई है, उसके बारे में बात हम भी करेंगे। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। सो साइंस कैफे होस्ट किया गया था मिशरब म्यूजियम्स एंड सिद्रा मेडिसिन ने, फोर्थ साइंस कैफे सेशन था ये 2026 का, एंड बिन जलमूद हाउस में ये रखा गया था, एंड द टाइटल वॉज बियॉन्ड द लेबल मेडिकेशंस एंड सप्लीमेंट्स। एंड बेसिकली जो कॉन्वर्सेशंस थी वहाँ पर वो फोकस थी ऑन द सेफ एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। आजकल सब बहुत स्मार्ट हो गए, सब अपने डॉक्टर बन गए, सेल्फ डायग्नोसिस कर लेते हैं, सेल्फ यू नो डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा ये मेडिसिन मेरे लिए काम करेगी क्योंकि मुझे इन्ग्रीडियंट्स पता है, चैट जीपीटी पर डाल देंगे और फुल रिलाई कर रहे हैं उस पर। That is not okay at all. और जितना ज़्यादा use आजकल हम लोगों ने all these vitamins और supplements का कर दिया, उसके बारे में discussion था कि whether it is actually working or not, and role of pharmacist पे भी बात की गई थी। Also medication safety के बारे में बात चल ही रही है National Patient Safety Week के through, जहाँ पर you know people are being encouraged कि भाई खुद से मत decide कर लो कि मुझे ये problem है तो मेरे लिए ये medicine सही है, गो टू दी प्रोफेशनल हेल्थ केयर, वो आपको प्रॉपर एडवाइस करेंगे, यू नो दे विल गिव यू प्रॉपर कोर्स सो दैट रूट तक जाके चीज़ें ठीक हो। आप से आपको कहीं पेन हो रहा है एंड उसका कुछ डीपर रीज़न है, पर सिर्फ पेन के लिए आपने एक पेन किलर ले लिया, वो टाइम बींग के लिए तो सॉल्व हो गया इशू, पर लॉन्गर रन में इट इज़ नॉट ओके। सो प्लीज़ प्लीज़ कंसल्ट अ प्रोफेशनल हेल्थ केयर एंड देन उसके बाद मूव ऑन विद वट एवर द मेडिकेशंस दे हैव आज यू टू टेक और वट एवर द कोर्स यू हैव टू टेक। ऑल्सो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कीजिए, olive.qa, वहाँ पे फार्मेसी रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में मिथ्स और फैक्ट्स हमने रिवील किए हैं, चेकआउट कीजिएगा उन्हें। ऑल्सो जल्दी जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं फार्मासिस्ट से वो भी आपको देखने को मिलेंगे, वी हैव गॉट द आंसर्स फ्रॉम द फार्मासिस्ट, एंड 25th को आप वो सुन पाएंगे और देख पाएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास रेडियो ऑलिव पर। आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: क्यों घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
1: कारपेट के नीचे सीलिंग के जारों में और दीवार पर
0: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7700525 पर
1: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: Benicia.
1: Benicia. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Danisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. सोनू निगम और कुणाल गांजावाला की आवाज में काल मूवी से तौबा तौबा, बड़ा ही कमाल गाना. और ये मूवी भी काफी इंटरेस्टिंग थी. वैसे डर गई थी यार मैं ये देख के. वेल, आई जस्ट सॉ समथिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड दिस इज क्रेजी. एक कंपनी है पुणे में जिन्होंने काफ़ी प्रॉफिट बनाया. एम्प्लॉयज़ ने बहुत यू नो दिल लगा के मेहनत करी है, काम करा है, दिन रात लगा दिए, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, यू नो, एंड कंपनी मेड प्रॉफिट इवेंचुअली. सो उस प्रॉफिट को सेलिब्रेट करने के लिए दे थ्रू अ पार्टी. अब वो पार्टी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई कि वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया. अब वो पार्टी ओवर होने के बाद एम्प्लॉयज़ को फिर से ओवरटाइम के लिए जाना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट तो बनाना पड़ेगा, लॉस में ले गए हैं तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया. आई थिंक कंपनी का अब ट्रस्ट तो बन ही चुका होगा अपने एम्प्लॉयज पे, तो वो यही गाना गा रही होंगी उनके लिए. सब पॉसिबल है यार चाहो तो. बिल्कुल ऐसी पार्टी करी है. जी हाँ, स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: Olive, 106.3 FM.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: एक सवाल पूछूं शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है
5: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत
6: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज
0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
8: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: You're listening to Radio 11.6.3 FM. Denisha Hapke, Seth Bindas, Morning Children, Albert.
1: Wacky Wisdom.
0: Wacky Wisdom. Wacky Wisdom में बात करते हैं एक कैफे की, विच इज फ्रॉम इंदौर, मेरी सिटी से है. सो ये कैफे जब खुला तो इट वॉज पे वॉट एवर यू वॉन्ट वाला सिस्टम था. कोई भी एक फिक्स प्राइस या मेन्यू कार्ड पे यू नो प्राइजिंग लिखी है वो वाला सिस्टम नहीं था. यू ऑर्डर एंड देन यू पे वॉट एवर यू फील लाइक. बेसिकली वो ह्यूमैनिटी को टेस्ट करने वाला प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट हुआ था. इनिशियली तो लोगों ने बढ़िया पे किया, देन इवेंचुअली यू नो एक रूटीन बन गया. 10 रुपये 20 रुपये पे करके जा रहे हैं एंड यू नो लाइक दे आर ईटिंग फॉर लाइक 300-400 बट नॉट पेइंग इनफ. सो कैफे जो था वो काफ़ी लॉस में जाने लगा. दिवला कैसे तो हम कैसे ही सर्वाइव करेंगे. फिर उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगाई. ये दुनिया और हम इंसान दिखावे पे चलते हैं, ठीक है. हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि किसी के सामने हमारी शान कम नहीं हो जानी चाहिए. सो नाउ व्हाट द कैफे ओनर डिड, उन्होंने बाहर एक टीवी लगाया लाइक वेयर पीपल आर सिटिंग एंड यू नो हैविंग देयर फूड एंड ड्रिंक्स. वहाँ पर हुएवर कम्स उसका नाम शो होगा, वट एवर दे हैव ऑर्डर्ड अलॉन्ग विद द मनी दे हैव डोनेटेड. बिकॉज वो तो कोई भी पैसे लेते नहीं है, एज सच फूड का फिक्स प्राइस नहीं है. यू जस्ट हैव टू डोनेट वट एवर यू वॉन्ट. सो अब डोनेशन का प्राइस जब वहाँ पर नजर आ रहा है तो सब ऐसे वो सेल्फ कॉन्शियस हो गए कि भाई मैं, मेरा ऑर्डर भी नज़र आ रहा है एंड वेन पीपल विल सी कि मैंने इतना खाया है और मैं 10 रुपये ही डोनेट कर रहा हूँ तो ये तो काफ़ी शर्मनाक बात हो जाएगी. लोगों ने फिर यू नो 1000-2000 ऐसे पे करना शुरू कर दिया और आई शुड से डोनेट करना शुरू कर दिया एंड द कैफे इज़ अ सक्सेस नाउ. ब्रिलियंट आइडिया. मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेल कर जो आजकल बिजनेसेस अपना फायदा बना रहे हैं, दैट इज सो ब्रिलियंट एंड दैट इज सो स्कैरी फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी कीप फॉलिंग इन दिस ट्रैप. जबकि हमें पता है कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है. पर नहीं, प्राण जाए पर शान न जाए. सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
2: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. Yeah, guys.

106.3 FM, Gio Bindas. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: तनिषा।
1: आतिफ असलम की आवाज में बजरंगी भाईजान से तू चाहिए ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर।
2: ये है चलती फिरती डिक्शनरी।
1: सो आज का जो वर्ड है इट्स अ जर्मन वर्ड, ठीक है। स्पेलिंग से इसके प्रोनाउंसिएशन का कोई लेना देना नहीं है। सो द वर्ड इज जेनसुथ एंड द स्पेलिंग इज SEHNSUCHT, जेनसुथ। ओके, सो इसका मतलब होता है वो बिटर स्वीट फीलिंग या फिर लॉन्गिंग बेसिकली। सो अपनी हर स्टेज ऑफ लाइफ में हम कुछ ना कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं कि यार आगे ना मेरी लाइफ ऐसी होगी, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, एंड देर इज नो गारंटी कि वो चीज़ें आप अटेन कर पाओगे, टच वुड कर पाओ, लेकिन देर इज नो गारंटी, राइट। ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि जो आपने इमेजिन किया है उसी तरह की लाइफ आपकी होने वाली है। एंड आई थिंक ये हर स्टेज ऑफ लाइफ में हम इमेजिन कर रहे होते हैं। जब छोटे होते हैं बड़ियों के सोचते हैं भाई ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसी होगी वैसी होगी, एंड देन द रियलिटी इज समथिंग एल्स। देन व्हेन वी आर इन द कॉलेज वी थिंक कि ये पढ़ाई करके आई एम गोना डू दिस, दिस विल बी हाउ माय करियर विल बी, एंड यू नो इस तरह से घर ले लूँगा इस टाइम पे कार होगी एंड एवरीथिंग, बट रियलिटी इज डिफरेंट। सो हर स्टेज पे जो एक लॉन्गिंग होती है फॉर समथिंग जो आप बहुत जोर से चाहते हो लाइफ में, पर आप उसको पूरी तरह से डिफाइन भी नहीं कर पाते और आपको ये भी नहीं पता है whether you will be able to attain it or not. That is zenzit for you. And what is that thing you are, if I must say, zenziting right now? बताइए मुझे 3311-1063 पर एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल अप टू यू बिंदास।
3: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशक्ल।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरभजन मान और तुसी सुन रहे हो कतर दा नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: Danisha.
1: उदित नारायण और चित्रा की आवाज में रंगीला मूवीज है यार सुन लो जरा ओनली ऑन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM। तनिषा आपकी इस साथ में 10 मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर एंड नेशनल अवार्ड 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड के विनर जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। सो यामी गौतम ने जीता है बेस्ट एक्ट्रेस फॉर आर्टिकल 370 एंड कार्तिक आर्यन जीत गए हैं चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर। देन बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर रणदीप हुडा को मिला है स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए एंड बेस्ट फीचर फिल्म भी आर्टिकल 370 ने जीता है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है संजय मिश्रा जी को भक्षक के लिए एंड देयर इज अ लॉट मोर बट कार्तिक आर्यन का विन वॉज अ शॉकर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज उनको उनकी जो एक इमेज बनी हुई है एंड द काइंड ऑफ मूवीज ही हैज डन यू नो कि बॉय नेक्स्ट डोर वाला ही है एंड देन विनिंग National Film Award at this age, at this stage of his career is a big thing. Let's see आगे उनके projects को ये किस तरह से impact करता है। बाकी फिलहाल जबरदस्त हिट भेज रही हूँ आपके लिए सुंदर ये रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
1: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
2: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: तनिषा
1: तनिषा दिल चाहता है मूवी से बहुत ही अमेजिंग गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. और अगर ये गाना सुने तो ये हर जनरेशन के लिए एकदम परफेक्ट फिट बैठेगा. नहीं सो आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू गाइज कि इफ यू हैवंट येट तो ये बात तो आपको मेरी सुननी ही पड़ेगी. रेडियो ऑलिव डॉट क्यू एस दी हैंडल उसे फॉलो कर लीजिए बिकॉज कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं एंड यू माइट मिस आउट ऑन समथिंग रियली अमेजिंग. ऑल्सो राइट नाउ वर्ल्ड फार्मेसी डे के लिए हमने आपसे जो सवाल पूछे थे उसके आंसर्स भी आपको बहुत जल्द वहीं मिलने वाले हैं. सो वो मिस आउट ना कीजिएगा और साथ ही कुछ मिथ्स और फैक्ट्स भी वहाँ पे पोस्ट किए गए हैं, चेकआउट कीजिए क्योंकि हमको खुद डॉक्टर बनने का बड़ा शौक है. सो वी शुड नॉट बी डूइंग दैट. बस इतना ही याद दिला रहे हैं अपनी सेहत इंपॉर्टेंट होती है यार. सो उसके साथ ऐसे खिलवाड़ ना कीजिए और साथ में हमें फॉलो कर लीजिए रेडियो ऑलिव डॉट क्यू ए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव.

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: तनिषा
1: दिलजीत दोसांझ की आवाज में लवर फ्रॉम मून चाइल्ड ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर और वक्त हो गया है मेरे जाने का मेरी जान मिलते हैं कल सुबह 6 बजे थर्सडे का दिन होगा और ढेर सारी मस्ती फुल ऐसे सुबह से एनर्जेटिक और वीकेंड वाले मूड में रहेंगे हम बढ़िया बढ़िया गाने होंगे ढेर सारी बातें करेंगे और आपको अच्छे मूड के साथ वीकेंड में छोड़कर जाएंगे फिलहाल चलती हूँ मिलूंगी कल आप हमें फॉलो कर लीजिए और अगर कोई भी बात जहन में हो परेशान कर रही हो किसी से शेयर करना चाहते हैं हम हैं यहाँ सुनने के लिए ठीक है 3311063 इज द नंबर यू कैन मैसेज अस एनी टाइम यू कैन कॉल अस एनी टाइम 4444 1063 पर और हैव एन अमेजिंग डे टू योरसेल्फ सुनते रहिए रेडियो ऑलिव जियो बिंदास मेरी जान

0: शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
1: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
2: तो इस फीलिंग के लिए पहुँचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600+ पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन। गराफा शॉपिंग डेज।

जब मैंने मम्मी पापा से कहा था ना कि मम्मी पापा मैं आपका नाम रोशन करूंगी, तभी उन लोगों ने भी यही कहा था कि करिए ना, तो फिर करिए, करके दिखाइए, चलिए हमें नाम रोशन। वेलकम जी, आपकी कशिश लौट कर आ चुकी है। सर्दी से जो है हम पीड़ित चल रहे हैं इस वक्त। मुझे समझ नहीं आता, जब टेम्परेचर जो है वो चल रहा है 30 के पार, तो फिर सर्दी कैसे हो जा रही है। कितना अजीब लगता है ये बोलने में कि मुझे इतनी गर्मी के मौसम में जो है इतनी सर्दी हो रही है। खैर, मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो चुका है, इस पर भी बातें करेंगे। लेकिन आई होप आपने मुझे एक दिन, पूरा एक दिन मिस किया हो। 3311063 पर जो है हाय हेलो गुड मॉर्निंग जो है आप मुझे भेज सकते हैं। बाकी इसी आवाज़ के साथ जो है आज हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे बड़ी बात तो मुझे ये देखो ये लगती है कि अब हम स्कूल में नहीं है। स्कूल में क्या है, मम्मी को जो है मनाया जा सकता था कि मम्मी आज जाने का मन नहीं है या तबीयत जो है वो उतनी ठीक नहीं हो पाई है, और मम्मी मान जाती थी। लेकिन M for मम्मी मान सकती है, M for मैनेजर, M for मैनेजमेंट नहीं मान सकता। सो देखिए, आना तो पड़ेगा। एंड M for मैं खुद जो है और नहीं रह सकती थी उस चार दीवारी में। मैं क्या है, वो इंसान हूँ जिसे हा ही ही लोगों के साथ खाका खीकी करना बहुत पसंद है। तो ये ओहो ओहो की जो सिचुएशन आ गई थी, इसमें मैं अकेले नहीं बैठ सकती थी। जब तक मैं चार लोगों से ना मिलूं, चार टाइप की गॉसिप ना करूं, आप लोगों से बातचीत ना करूं, आप लोगों के हालचाल ना जानूं, मुझे क्या है अच्छा सा फील नहीं होता है। शायद इसीलिए मैं रिकवर नहीं कर पा रही थी। अब देखिए, आप लोगों से बातचीत कर रही हूं, तो बढ़िया जो है रिकवरी होगी मेरी, बहुत बढ़िया आगे बढ़ पाऊंगी मैं। सो इसी बात पे मुझे ऐसा लगता है कि अमेजिंग वाले फन वाले गाने जो है वो हमें जो है चलाने चाहिए आज प्लेलिस्ट में, एंड इंजॉय करना चाहिए खुल के। सो खुल के एंजॉय कीजिए और खुल के मुझे मैसेज कीजिए 3311063 पर हाय हेलो गुड मॉर्निंग और गेटवेल सून लिख दिया, तो फिर आपकी बात तो देखो माननी पड़ेगी। इस हेल्थ को मुझे ठीक होना ही पड़ेगा। सो वॉल्यूम बढ़ाकर लाल लाल कलर ची बांगड़ी वाला गाना जो है, यानी बैंगल सॉन्ग जो है, वो इंजॉय कीजिए आप, आपकी कशिश के साथ। एंड फिर जो है मैसेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Check. Brought to you by Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alcohol.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक भी हो रहे हैं 10:13. दैट इज 10:13. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
2: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
3: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं. यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा.
4: September 24th एट हॉलीडे in Doha. Retro vibes, pure nostalgia and 1,000 memories.
3: Log on to Q-Tickets or www.a2zetc.com or apni tickets aaj hi book kare. Dharohar miss mat karna.
5: Hi there friends, this is DJ Suketu. DJ Suketu. You're listening to Radio Olive 106.3 FM Geo Bindas.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

0: मूवी का नाम मेट्रो इन दिनों एंड सिंगर का नाम ऑफ कोर्स वन एंड ओनली अरिजीत सिंह और ये है आपकी कशिश जी आपकी कशिश जो है आपका फेवरेट शो लाइफ मस्त है लेकर आ गई है जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार वैसे तो बहुत सारी बातें हमें करनी है लेकिन आज मेरे साथ क्या हुआ मैं बताना चाह रही हूँ। सो मैंने जैसे ही इंस्टाग्राम खोला ना वैसे ही मुझे एक पोस्ट दिखा जिसमें ये लिखा था कि यार ऐसी चीजें हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि कतर ने आपको अपना लिया है और आपने कतर को अपना लिया है। सो उसमें सबसे पहली चीज जो थी वो ये थी कि अगर 30 डिग्री का टेम्परेचर होने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि अरे अब तो जो है मौसम ठंडा हो गया है चलो बाहर जाके करक भी के आते सो आपने ट्रूली कतर को अपना मान लिया है क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस जो है बाकी जगहों पे बाकी कंट्रीज में जो है नॉर्मल नहीं समझा जाता है लेकिन हमारे यहाँ यानी कतर में इसे बहुत ही ज्यादा नॉर्मल समझा जाता है एंड ये तो बहुत बढ़िया मौसम हो जाता है। सो आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इस वक्त का टेम्परेचर दोहा में 36 डिग्री सेल्सियस है एंड आज का लोएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है एंड धीरे धीरे हौले हौले करके हम हमारे बेस्ट सीजन की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं। इस पर बात करेंगे हम ऑटम की बात करेंगे लेकिन थोड़ी सी देर में। वैसे आप सब लोगों के मैसेजेस जो है यहाँ पर आ रहे हैं कैसे हैं कशिश एंड तबीयत जो है वो कैसी है ये सब आप लोग पूछ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हाय हेलो गुड मॉर्निंग जो है बाकी जिन लोगों से नहीं मिला है उनसे मैं होप कर रही हूँ कि जो भी मुझे सुन रहा है एटलीस्ट एक हाय हेलो या गुड मॉर्निंग तो ड्रॉप कर ही सकता है कशिश के नाम पे। सो 3311063 इज द नंबर। जल्दी से जो मन में आ रहा है वो ऑडियो नोट या मैसेज मेरे लिए ड्रॉप कर दीजिए एंड यार फोटो खींच के अगर बाहर की भेज देंगे तो मुझे जो है जरा यू नो सनलाइट मिल जाएगी। डॉक्टर ने कहा है कि अगर मुझे सनलाइट मिलेगी थोड़ी थोड़ी तो मुझे अच्छा लगेगा तो यार आप सबसे बेस्ट सोर्स हो सकते हो सनलाइट के। सो जल्दी से आपके हिस्से की सनलाइट थोड़ी सी मुझे दे दीजिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी फोटो बाहर की मुझे भेज दीजिए ताकि इस एसी वाले स्टूडियो में थोड़ा सा बाहर वाला फील मुझे आ जाए। मैं हूं आपकी कशिश मुलाकात होगी आपसे थोड़ी सी देर में। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट पर जरा वॉल्यूम बढ़ाकर जो है एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर क्या बात ये बात है।

लगान मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया। एंड इस गाने के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूं तो इस गाने के लिरिक्स जो हैं वो जावेद अख्तर साहब ने लिखे हैं, लेकिन इस गाने में जो इंग्लिश पार्ट है वो जो है जोया अख्तर और फरहान अख्तर ने उस गाने में जो है ये जो इंग्लिश लिरिक्स है वो उन्होंने लिखे हैं। हाँ जी, आपकी कशिश आ चुकी है लाइफ मस्त है शो लेकर 106.3 रेडियो आलू पर, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। यूं तो यार देखो, हमें गाने जो है वो काफी पसंद आते हैं, कुछ गाने हमारे दिल में बस जाते हैं, हम सालों साल उन गानों को सुनते हैं, लेकिन कभी अगर किसी गाने के बारे में कोई बैक स्टोरी पता चल जाए, कोई ट्रिविया पता चल जाए, तो फिर उस गाने के तरफ हमारा प्रोस्पेक्टिव जो है देखने का वो काफी बदल जाता है। एंड यही मेरे साथ हुआ। मैं जो है अभी मुझे काफी टाइम मिला कल जो है, मैं अपने घर पर बैठी हुई थी एंड सर्दी से रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने सोचा यार कुछ प्रोडक्टिव देखा जाए। तो मैंने जो है लगान मूवी के गानों की मेकिंग जो है इसके लिए एक इंटरव्यू हो रहा था, जिसमें काफ़ी मतलब एक दो महीने हो गए इस इंटरव्यू को यूट्यूब पे आए हुए, एंड उसमें आमिर खान साहब, शंकर एहसान लॉय साहब एंड जो है ए आर रहमान साहब, शंकर एहसान लॉय नहीं, वो मैंने दूसरा मैंने मिक्स कर दिया है, शंकर एहसान लॉय साहब जो है वो दिल चाहता है में बैठे हुए थे, एंड जावेद अख्तर साहब जो है वो बैठे हुए थे लगान के लिए, एंड ए आर रहमान साहब बैठे हुए थे। एंड इन्होंने हम जो पूरी मेकिंग थी ना इस मूवी के गानों की वो पूरी तरीके से बताई, एंड इतना मज़ा आया मुझे। एंड ओरी छोरी गाना इस मूवी का सबसे लीस्ट फेवरेट गाना था मेरा, लेकिन अब सबसे ज़्यादा फेवरेट हो गया है। सो ओरी छोरी गाना जो है वो अभी आपने सुना। एंड अगर इसके बारे में और स्टोरीज आपको जाननी है जो मैंने इंटरव्यू में जो है अपने पॉइंटर्स बनाए हैं, अगर आपको पूरा इंटरव्यू नहीं देखना है एंड शॉर्ट में एक समरी चाहिए तो मैं बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं ना स्कूल में भी यही करती थी, मैं पढ़ के जाती थी और मेरे जो दोस्त थे वो मुझसे यही बोलते थे कि यार अब जल्दी से समरी बता दो, तो मैं समरी उन्हें समझा देती थी एंड उनको उनके मार्क्स मेरे से ज़्यादा आ जाते थे। शायद मैं टीचर ज़्यादा अच्छी हूँ, स्टूडेंट नहीं। वैसे चलिए आज जो है स्ट्रेस की बात करते हैं कि स्ट्रेस जो है वो किस तरीके से कम हो सकता है। अब स्ट्रेस का मेन रीज़न अगर आज की लाइफ में हमारा यही है कि हम सोशल मीडिया पे काफ़ी नेगेटिव कंटेंट जो है वो भी कंज्यूम करते हैं। एक वीडियो जो है वो आपने सैड सी देख ली, या एक वीडियो जिसमें थोड़ी सी ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ है वो आपने देख ली, तो उसके बाद आपने पूरी फीड जो है वो वैसी सेम हो जाती है। सो कभी भी अगर आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं या टेलीविज़न पे कोई भी ऐसी हैवी चीज़ देख रहे हैं एंड उसके बाद आपको ये मन करता है कि यार अब नहीं देखना और मुझे बंद करके रखना है बिकॉज मुझे ये वाला कॉन्टेंट और कंज्यूम नहीं करना, तो अगर आपने बंद करके वहीं का वहीं सपोज़ आप एक रील देख रहे हैं एंड उस रील पर जो है आपको नेगेटिव न्यूज़ थोड़ी सी दिख गई है एंड आपको अब लग रहा है कि यार अब नहीं देखना, तो आपने अगर उसी रील पे अपना फोन बंद कर दिया तो फिर वो नेगेटिविटी हमेशा आपके साथ रहेगी। लेकिन बेटर जो है तब होगा अगर आप अपनी नेगेटिविटी को एक क्लोजर दे दोगे। सो जब भी आप कोई ऐसा हैवी कंटेंट जो है वो कंज्यूम करें, जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हो, वो जो है बहुत ओवर इमोशनल हो सकता है या बहुत हैवी हो सकता है। सो आपको जो है बस करना यह है कि आपको जो है कोई कॉमेडी कॉन्टेंट जो है वो आखिरी में देखना है, यानी आप एक कॉमेडी रील या कुछ भी ऐसी फ़नी चीज़ जो है वो लास्ट के लिए बचा के देख रखिए एंड फ़ोन बंद करने से पहले वो रील एक बार देख लें, तो क्या है लास्ट में जो चीज़ आपने कंज्यूम करी है वो आपके साथ रहेगी। हाँ, वो जो हैवीनेस है कंटेंट की वो थोड़ी कम नहीं होगी, लेकिन हाँ आप जाते जाते अपने साथ एक फ़नी चीज़ जो है वो लेकर जाएंगे। सो ये ट्राई कीजिए, हो सकता है कि जो कॉन्टेंट से इतना हैवीनेस आपके दिमाग में आपको फील हो रहा है ना वो ना हो। मैं हूँ आपकी कशिश, फिलहाल अपने आप को जो है मेन कैरेक्टर समझते हुए एक मेन कैरेक्टर वाइब वाला जो गाना है वो इंजॉय करते हैं। सो फिलहाल वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Ready? To learn.
1: Yes.
0: To play.
1: Absolutely.
0: To grow.
1: With Maserati.
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

The Archies का ये गाना जो है आप एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। अब देखिए यार, काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जेंजीज जो है अब अपना ओन करके जो है उस चीज को कर रहे हैं, लेकिन ये जो है शुरुआत जो है मिलेनियल से ही की गई थी। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब वाह वाह वूम, ये जो आपने गाना सुना ना, इसका एक जो स्लैंग है वाह वाह वूम, या जो है इसे जो है पहले 80s के टाइम पे बहुत ही एक्साइटेड होने के लिए यूज किया जाता था, एंड फिर मिलेनियल्स ने इसका यूज कम कर दिया, एंड अब जेंजीज जो है इसे यू नो अगर

0: कहीं पे उन्हें बहुत मजा आता है, तो ओ माई गॉड द इवेंट वॉज वावा वूम. सो अब इस तरीके से जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है. सो आई एम हैप्पी दैट फाइनली जो है पुरानी चीजें वापस आ रही हैं पुराने फैशन की तरह. मतलब अभी रिसेंटली मैं जो है शॉपिंग के लिए बाहर गई थी एंड मैंने देखा एंड सच पे डिस्प्ले में कुछ ऐसे कपड़े मुझे दिख गए जो मेरी मम्मी के, मैंने ना पुराने सूट केस में कितने साल पहले देखे थे. एंड मम्मी को, मम्मी ने कहा था कि अरे बेटा तुम्हारे साइज का इसे करा देती हूँ, और मैंने कहा था कि नहीं मम्मा दिस इज सो ओल्ड फैशन, मैं नहीं पहनूंगी. एंड वो सारे कपड़े, वो सारे डिजाइन जो है अब वापस आ गए हैं एंड उसे Y2K कहा जा रहा है. एंड रियली अर्ली 2000 के हैं, जब मैं पैदा हुई थी उस टाइम के कपड़े जो है अब वापस आ रहे हैं. तो सही टाइम पे अगर मम्मी कपड़े सेव करके रख लिए होते तो आज जो है मैं भी फैशनिस्टा होती. वैसे मुझे नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये पुराना फैशन अब नया करके क्यों ला रहे हैं, ये उसको आउटडेटेड ही क्यों करते हैं. चलने देना चाहिए ना, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते जाओ एंड पुरानी को भी चलने दो. कोई अगर पुरानी चीज़ें पहन रहा है तो उसको ओ माई गॉड यू वेयरिंग दिस, दिस इज सो 90s, दिस इज सो ओल्ड, ऐसा क्यों बोल देते थे एंड अब उसी को फैशन बना दिया. मुझे जो है काफ़ी कन्फ्यूज कर देते हैं ये फैशन वाले लोग. लेकिन देखिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो बताना चाहती हूँ. सो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस में भी वाइब जो है वो मेंटेन रहे जैसे हम रेडियो पे मेंटेन करके रखते हैं, तो उसके लिए बस आपको हमें इनवाइट करना है आपके ऑफिस स्पेस में. हाँ जी, अब आपके ऑफिस पे, आपके वर्क स्पेस पे जो है आप रेडियो ऑलिव की टीम को और रेडियो ऑलिव के RJs को इनवाइट कर सकते हो. सो अगर आप मैनेजर हो, आप HR हो, या फिर आप जो है एक बिजनेस ओनर हो, सो रेडियो ऑलिव की टीम को अपने ऑफिस में इनवाइट कर सकते हैं आप बहुत सारे फन फॉलिक मस्ती और मजे के लिए, जहां पर हम आपको बहुत सारे फन गेम्स खिलाएंगे एंड इन टोटल आपकी जो टीम है उसको रीएनर्जाइज कर देंगे, रिजुविनेट कर देंगे. सो रजिस्टर करने के लिए आपको जो है बस HL यानी हैप्पीनेस लाउंज लिखकर हमें व्हाट्सएप कर देना है 3311063 पर. सो जल्दी से फोन उठाइए एंड हमें मैसेज कर दीजिए. बाकी ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर इंतजार कर रहा है आपका आपके रेडियो सेट्स पर. सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इस गाने को एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.
1: Radio Olive Park. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye gana.

टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे 11:11 दैट इज 11:11 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
2: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: Hi guys, this is Jonita Gandhi.
4: Radio Olive, I'm the number one.
3: You are listening to me on Radio Olive. Gio Bindas.
4: Radio Olive, I'm the number one.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफ

0: कुछ चीजों का ना आपको हमेशा से सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस ही रहता है. जैसे इस टाइप की मूवी, ये जो मूवीज हैं, इस टाइप की मूवीज का सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस ही रहा है थिएटर में. मम्मी पापा ने बताया कि यार हमारे टाइम की जो मूवीज होती हैं वो तो बढ़िया होती थी. सो ये सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस हुआ ना. ऐसे बहुत सारे सेकेंड हैंड एक्सपीरियंसेस मेरे साथ लाइफ में हुए हैं. एंड स्पेशली अगर मैं कतर की बात करूँ तो मेरे साथ बहुत सारे सेकेंड हैंड एक्सपीरियंसेज है. सब ने मुझे बताया है कि यार यहाँ के ना की जो हल्की हल्की बारिश होती है वो बहुत अच्छा होता है. सेप्टेम्बर का एंड बहुत अच्छा होता है. अक्टूबर का स्टार्ट बहुत अच्छा होता है. एंड मैंने तो कतर को फरवरी से ही देखा है ना. सो मेरे लिए ये वाला जो टाइम है, जो अभी आने वाला है, उसका एक्सपीरियंस काफी सेकेंड हैंड रहा है. मतलब लोगों से ही सुना है मैंने, अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है. हाँ जी, आपकी कशिश हूँ मैं अंशु. आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. एंड सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो अभी तक मैंने इतना लोगों से सुन लिया है ना कि कतर आप देखिए अभी आने वाले टाइम में इतना खूबसूरत लगने वाला है, मौसम इतना अच्छा लगने वाला है कि अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ. मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं वेट कर रही हूँ कि अच्छा ये जो है इस टाइम पीरियड पर होगा, अच्छा ये इस टाइम पीरियड पर होगा. सो मेरे को काफ़ी एक्साइटमेंट है. एंड ऊपर से फिर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट का जो है ये आ जाता है कि यार देखिए ऑटम जो है वो आने वाला है, हल्के हल्के बारिश के लिए आप तैयार हो जाइए. अब ग्रेजुअली जो है हम सर्दी के फेज में जाने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आ जाता है. सो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मैं एक ऐसी यू नो न्यूज़ पर पहुंच गई जहां पर कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट ने जो है ये कहा है कि ऑफिशियली अब जो है ऑटम सीजन में हम एंटर कर चुके हैं. एंड हल्की हल्की बारिश की फुहारें आपको आने वाले वक्त में यानी एंड ऑफ सेप्टेम्बर तक जो है वो देखने को मिलने वाली है, फील करने को मिलेगी. हल्की हल्की सी यू नो ठंडक आपको. एंड ग्रेजुअली अब टेम्परेचर नीचे जाने वाला है. सो अच्छा लग रहा है. एंड कल मुझे ऐसा लगता है मौसम के मामले में कुछ एक ड्रास्टिक चेंज जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है. सो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं. एंड मैं तो काफ़ी यू नो इंतज़ार कर रही हूँ कि सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस से कब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है मैं इसे कन्वर्ट करूँ. फिलहाल कूलनेस की बात करते हुए कूल सॉन्ग ऑफ द आर पे जो है हम आ जाते हैं. कमरिया गाना आ रहा है स्त्री मूवी से आपकी रेडियो सेट्स पर. जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आर.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: इट्स मी एंड नायक की रानी मुखर्जी अगेंस्ट द वर्ल्ड. मतलब मंजरी जो थी वो मतलब फुल वाइब है कशिश की. अगर कशिश जो है इंडिया में किसी गांव में होती तो वो बिल्कुल मंजरी जैसी होती, आई एम श्योर. जी आपकी कसूस लेकर आ गई आपके लिए लाइफ मस्त है, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. 106.3 रेडियो ऑल पर आप ये शो एंजॉय कर रहे हैं. एंड मैं जब कतर आई थी ना, तो कुछ दिनों तक मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे कोई ऐसी जगह ले जाओ जहां दूर दूर दूर तक मुझे सिर्फ हरियाली दिखे. एंड मुझे जो है फिर एक ऐसी जगह ले जाया गया, मैं कटारा हिल्स जो है वहां पर गई. एंड वहां जाके मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन अब ऐसी बहुत सारी जगहें आपको और जो है वो कतर में देखने को मिलने वाली हैं. जी द मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी ने जो है ये डिसाइड किया है कि अब कतर नेशनल स्ट्रेटजी के तहत जो है बहुत सारे एरियाज को जो है ग्रीन बनाया जाएगा. स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को जो है अब बढ़ाया जाएगा, यानी स्पोर्ट्स आपको अरीनाज काफी और दिखने वाले हैं. एंड बहुत सारे ग्रीन कॉरिडोर्स अक्रॉस द कंट्री आपको नजर आने वाले हैं. सो बस और ज्यादा हरियाली देखने के लिए तैयार हो जाओ. वैसे ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनने के लिए भी तैयार हो जाओ. वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ. थोड़ी सी देर में बातचीत जारी रखेंगे. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: Radio.

अब देखिए यार, मैं हमेशा से वो इंसान रही हूँ जो थोड़ा सा नादानियों पे बिलीव रखता है, जो थोड़ा सा यू नो ऐसे क्यूट स्टफ में ज्यादा इंडल्ज्ड रहता है। कॉमेडी जिसे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं जब भी आपके लिए कोई मूवी रिकमेंडेशन लेकर आती हूँ ना, तो हमेशा ऐसे ही वाइब वाला कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ जिससे आपको हंसी आए, आपके फेस पे एक स्माइल आ जाए। लेकिन आप लोग हैं कि थ्रिलर्स के पीछे ही पड़े हुए हैं। हाँ जी, आपकी कशिश लौट के आ चुकी है लाइफ मस्त है आपके लिए लेकर, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यार, क्या होता है ना कि मैं जब भी मूवी रिकमेंडेशन आपके लिए लेकर आती हूँ, आपको कुछ हंसी मजाक वाली मूवी जो है वो आकर यू नो रिकमेंड करके चली जाती हूँ। एंड अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जब ऐसी ही एक फहरिस्त, एक लिस्ट जो है वो शेयर की आप लोगों से कि ऐसी यू नो कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवीज कौन कौन सी हैं जो आप रिविजिट कर सकते हो, रीवॉच कर सकते हो। सो उस पर जो है किसी ने मुझे मैसेज किया था कि यार कशिश, ये कॉमेडी मूवीज तो ठीक है लेकिन आप थ्रिलर्स क्यों नहीं बताते। सो मैंने सोचा ठीक है, ये मेरे थोड़े कंफर्ट जोन से बाहर का है, मैं थ्रिलर्स देखती नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को बता तो सकती हूँ रिव्यूज पढ़ने के बाद कि यार वो कौन कौन सी मूवीज हैं जिन्हें आपको एक बार देखना चाहिए। सो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम नए से पुरानों में जाएं, सबसे पहले तो तुम्बाड़ एक अच्छी मूवी है, वो आप देख सकते हैं। कहानी मूवी विद्या बालन की बहुत ही अमेजिंग है, इसे आप देख सकते हैं। इत्तेफाक यू नो अंडर रेटेड मूवी है, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बहुत अमेजिंग काम किया है, तो इत्तेफाक मूवी भी आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद तलाश, अगेन बहुत अच्छी मूवी है, आमिर खान, करीना कपूर एंड इसमें रानी मुखर्जी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही अमेजिंग मूवी है, ये भी देख सकते हैं। एंड उसके बाद अगली मूवी का नाम है UGLY, ये भी देखिए, ये भी बहुत अच्छी मूवी है। उसके बाद अंधाधुन, ऑफ कोर्स अंधाधुन हम कैसे भूल सकते हैं, आयुष्मान खुराना, तब्बू, बहुत ही अमेजिंग यू नो केमिस्ट्री एंड बहुत ही अमेजिंग मूवी। सो एक बार अंधाधुन भी ज़रूर से देखिएगा। एंड टू एंड द लिस्ट, मुझे लगता है महाराजा भी आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। सो ये कुछ मूवीज़ हैं जो अगर आपको थ्रिलर देखनी पसंद है, सस्पेंस मूवीज़ देखनी पसंद है जिसमें आप एंड तक हुक्ड रहें कि यार एंड में क्या होता है, तो ये मूवीज़ आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर अच्छे से नहीं सुन पाए नाम, तो 3311063 पर आकर मैसेज कर दो, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। फिलहाल जो है एक ऐसा ही इंटेंस गाना जो यार आपके रेडियो सेल्स पर, गाने का नाम है तबाही, टॉक्सिक मूवी का ट्रैक है। वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:13. दैट इज 12:13. स्टेडियम जियो बिंदास.
2: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
3: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत.
4: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24-27 सितंबर. नेस्टो हाइपर मार्केट अलगराफा. कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600+ पार्किंग स्पेस भी. सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज.
5: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
6: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन.
7: हाय, दिस इज विपाशा बासु.
8: हाय, आई एम राजकुमार राव.
9: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा.
10: हाय, दिस इज दिशा पार्डी.
6: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

0: भाई कभी कभी तो ऐसा लगता है ये सबको छोड़कर सिर्फ मोहित चौहान जी को जो है सुनने लग जाऊं, बस मोहित चौहान जी को सुनूं और कोई काम ना करूं। और शायद अभी पिछले जो है एक दिन मैंने यही किया है। हाँ जी, वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, वैसे तो हमें सारे ही स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हम एक क्रिकेट पगलू हैं, हमें क्रिकेट के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा मन होता है जानने का, थोड़ा बहुत पढ़ने का, थोड़ा बहुत देखने का। तो बस इसी के चलते हमने जो है कल के मैच के बारे में थोड़ा सा ऐसे जानकारी पता लगाने की कोशिश करी, और हमें लगा यार इंडियन क्रिकेट टीम का, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का मैच जो है वो जापान की क्रिकेट टीम के साथ है, एंड जापान को जो है इतना क्रिकेट खेलने का कहां पर एक्सपीरियंस है, कहां अच्छा खेल पाएगी। ये तो यार मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, 5 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा। यस, 5 ओवर में मैच खत्म हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि बारिश हो रही थी एंड मैच जो है वो 20 ओवर्स से 5 ओवर्स का कर दिया गया था, जहां पर दोनों को 5-5 मतलब ओवर मिले थे खेलने के लिए। अब हमें लगा था कि यार जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इंडियन टीम को इतना एक्सपीरियंस है, इतने सारे मैचेस ऑलरेडी जीती हुई है इंडियन टीम, सो जापान के आगे जो है टिकना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन आई किड यू नॉट, सिर्फ 2 रन से जो है इंडिया की टीम जीती है एंड जीत गए। बढ़िया लगा, बढ़िया बढ़िया, चलिए जीत गए अच्छी बात है, लेकिन मेहनत कितनी हुई है और मैच इंटरेस्टिंग कितना था, एक बार जाके हाईलाइट जरूर देखना। अगर आप फुटबॉल फैन है ना तो भी एक बार जाकर जो है इस मैच की हाईलाइट्स को देखो, आपको जो है क्रिकेट से प्यार हो जाएगा। एंड देखिए, मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि मेरी ना कोई टीम फेवरेट नहीं है, बट ये स्पोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, यानी जीते कोई भी टीम जो है क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। सो बस वही मुझे जो है इस मैच में होते हुए दिखी है, एंड जापान ने अपनी जगह बनाई है एंड सच में हमें प्रूव किया है कि देखो यार अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सो कल का मैच जो है क्रिकेट प्रोस्पेक्टिव से मुझे कैसा भी लगा हो, लेकिन एक मैसेज के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा इसलिए लगा था कि देखो आप ना किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हो सकता है कल किसी ने आपका ऑफिस ज्वाइन किया हो, लेकिन वो आपसे एक हफ्ते में ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है, एंड इसके लिए जो है आपको अपने आप को आगे बढ़ाते रहना, सीखते रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बस इसी मैसेज के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो सुन लेना चाहिए। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना जो है इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: सर क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

इस वाले रफ्ता रफ्ता से मैं कब जो है वो जगजीत सिंह वाले रफ्ता रफ्ता पे पहुंच जाती हूँ मुझे समझ ही नहीं आता। ओजीज जो है उनको ये बात समझ आएगी, ये नए लोगों को नहीं समझ आएगी जो म्यूजिक अभी अभी सुनना शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, आपकी कशिश हूँ मैं, लाइफ मस्त शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। 106.3 रेडियो ऑलिव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड मैं अपना जोक थोड़ा सा समझा देती हूँ। रफ्ता रफ्ता जो है बेसिकली जगजीत सिंह साहब की एक बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल है। सो कभी अगर गज़ल सुनने का मन हो तो एक बार रफ्ता रफ्ता ज़रूर लगाइएगा। एंड मतलब ये देखिए आप, वर्ड जो है वो सेम ही है, रफ्ता रफ्ता ही वो बोल रहे हैं, लेकिन कितना फर्क पड़ता है टोन से। सो इसीलिए जब अगली बार कोई आपसे लड़ाई में कहे कि आई डोंट लाइक योर टोन, तो जो है आप समझ जाइएगा कि गलती आपकी नहीं, गलती आपकी टोन की है। अभी तक गलती सामने वाले की थी, लेकिन अब आपने टोन गलत यूज कर दी है, तो अब गलती आपकी है। सो इसलिए टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टोन के बारे में कुछ सीखना हो तो आप मुझसे सीख सकते हैं। फिलहाल जो है मैं कहना चाहूंगी कि अस्मा जी ने एंड बहुत सारे अलग अलग लोगों ने जो है मुझे कहा है कि कशिश गेट वेल सून, आपकी आवाज आर दर आर, यानी फर्स्ट आर में, सेकेंड आर में, और अब हम तीसरे आर में पहुंच चुके हैं अपने शो के, बेहतर होती जा रही है। सो आपकी हेल्थ भी ऐसे ही बेहतर हो। थैंक यू सो मच, बस आपकी इसी प्यार की काफी ज्यादा जरूरत थी। बाकी बहुत सारी बातचीत जो है अभी भी कम ऐसे लग रहा है कि हुई नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है गानों के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो और बेहतर लगेगा। वैसे आपको अगर मैं थोड़े से यू नो डीप गाने सुनाऊं और उनकी बात करें, तो उसमें एक गाना है जो सबसे ऊपर मेरी लिस्ट में रहता है, जोधा अकबर मूवी का ये गाना है, गाने का नाम है ख्वाजा मेरे ख्वाजा। तो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना इन्जॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और स्टे ट्यून्ड रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास।

अभी पराग जी कैसे बात कर रहे हैं आप, ऐसे तू तड़ाक करके बात नहीं करते हैं। हमारे यहाँ सिखाया गया हमको यार आप करके बात करते हैं, है ना। और ज्यादा से ज्यादा जो है, ज्यादा आप क्लोज हैं तो आप तुम करके बात कर सकते हैं। ये तू तो हमारे यहाँ नहीं चलता है। देखो देखिए, खुद के लिए भी मैं आपकी कशिश जो है इस्तेमाल करती हूँ, तुम्हारी कशिश ये ऐसा कुछ नहीं बोलती ना। सो बस आपकी कशिश के देखिए जाने का वक्त आ गया है। सो आपसे हम मिलेंगे अब कल जो है वीकेंड की वाइब में इंजॉय करेंगे, मस्त बातचीत करेंगे, वीकेंड के प्लान्स डिस्कस करेंगे एंड बस आपकी खुशी जो है वही उसी की दुआ मांगेंगे। आप भी बस हमारी खुशी की दुआ मांगिए, मेरी सेहत की दुआ मांगेगी यार, बढ़िया से जल्दी ये जो सर्दी है ये चली जाए एंड एक्चुअल में सर्दियाँ जो है वो कतर में आ जाए। सो 3311063 इज नंबर, इस पर अगर आप अपने मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं। रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको हम सभी आरजेस देखने को मिल जाएंगे। बाकी स्टे ट्यून रहिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास। अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं रेडियो सेट्स पर, सो वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए और बस जियो बिंदास कहते रहिए यार। टाटा बाय बाय, टेक केयर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर। नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा, कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600+ पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन। गराफा शॉपिंग डेज।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: हाय, मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है स्वैग के साथ। स्वागत है, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे चलिए एक साथ बैठकर शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, जहां पे गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए, 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Olive 106.3 FM Geo Bindas.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Hi, I'm Suhali Khan. And you're listening to Radio Olive, Geo Bindas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: Olive laga aur ho ja recharge. Olive recharge.
4: This hour is brought to you by
5: मलाबार गोल्डन डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्डन डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं एक बहुत बढ़िया चीज आपको बताना चाहूंगा। एक बंदा है भाई इंस्टाग्राम में, उसने अपना दिमाग चलाया और सिस्टम को ब्रेक कर दिया। इसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है एक गूगल ड्राइव की तरह यूज किया। सो बात यह है कि हम सब जानते हैं कि गूगल ड्राइव में एक पर्टिकुलर अमाउंट तक हम डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद या तो हमें उनका प्रो मॉडल परचेज करना पड़ेगा या फिर हमें अपने फाइल्स जो है डिलीट करने पड़ेंगे, है ना। मगर इस महाशय ने जो है दिमाग चलाया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में 28.7 मिलियन पोस्ट डाले। उसके टोटल फॉलोअर्स उस टाइम पे 79,000 थे, मगर उसके पास जो पोस्ट उसके इंस्टाग्राम में डले थे वो 28.7 मिलियन थे। सो बेसिकली उस बंदे ने अपने इंस्टाग्राम को ही गूगल ड्राइव बना लिया। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
3: Cool song.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे उस एक दर्द, उस एक दुख के बारे में बताना चाहूंगा जो शायद हम में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर गुजरा होगा। देखिए, सुबह उठा आज मैं, थोड़ा ऐसे फ्रेश होने के बाद, थोड़ी देर ऐसे बैठने के बाद, जब मैंने अपना फोन उठाया तो मैंने देखा कि मैंने अपने फोन को चार्ज में रखा था, मगर स्विच मैंने ऑन नहीं किया और फोन में सिर्फ 3% बैटरी बची थी। और ये जब होता है, उस टाइम जो दर्द होता है, उस टाइम जो दुख होता है, उस टाइम कुछ कुछ लोग जो ऐसे पैनिक कर जाते हैं, सोचते हैं कि भाई क्या कर रहा हूं मैं अपनी जिंदगी के साथ। अगर ऐसा आपने कभी किया है तो मैसेज कीजिए मुझे 3311063 पर। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक बंदा एक रात को एक घर में चोरी करने के लिए घुसा। चोरी वोरी करके जब वो निकल रहा था तो गलती से वहां का फिश बोल जो था वो उससे गिर गया और टूट गया। तो यूजुअली एक चोर क्या करता, भाग जाता, मगर ये बहुत ही बड़ा पेट लवर है। इसने क्या किया, उस फिश को उठाया, सीधा उनके वॉश बेसिन के पास गया, उसके ओपन लिड जो था उसका उसको बंद किया और उस सिंक में पानी भर के उस फिश को वहां डाल दिया। उसने मेक श्योर किया कि फिश को कुछ नहीं होना चाहिए, मछली को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मछली इंपॉर्टेंट है बाबू। सोचिए यार, वो चोर जरूर है मगर पेट लवर भी है। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
2: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जालों में और दीवार पर।
1: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7700525 पर।
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ। ਭਜਨ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲਵ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
0: ਆਲਿਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ।
4: ਆਲੇ ਲਗਾ ਔਰ ਹੋ ਜਾ ਰਿਚਾਰਜ।
5: ਆਲਿਵ ਰਿਚਾਰਜ,
0: ਆਲਿਵ ਰਿਚਾਰਜ, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
6: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे मुझे यार एक चीज समझ में नहीं आती, ठीक है। मतलब एक तो मुझे हॉरर मूवी देखना पसंद नहीं है, ऐसा है कि मुझे डर नहीं है, पसंद नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि भाई जब हॉरर मूवी में आगे वाला देख रहा है कि एक घर है जिसकी हालत खराब है, जिसके बारे में लोगों ने बुरा रिव्यू दे रखा है, और उन्हें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस घर में, फिर भी उन्हें लगता है कि हमारे बच्चों के परवरिश के लिए इससे बढ़िया घर हमें और कहाँ मिल सकता है। करके सोच के देखिए यार, जब जानते हैं कि भाई आगे वाले घर में कुछ भी हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, ये जानते हुए भी वहां जाना जो है ना, इसे हिम्मत बोलेंगे या फिर इसे क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता। बट एनीवे, मैं नहीं देखता हॉरर मूवी, मगर ये एक कॉमन ट्रोप जो है बहुत सारे हॉरर मूवीज में होता है। अगर आप एक हॉरर मूवी फैन हैं तो मुझे मैसेज कीजिए 3311063 पर और बताइए मुझे कैसा लगता है, आपका सबसे फेवरेट हॉरर मूवी कौन सा है। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक ऐसे कंफ्यूजन के बारे में मैं बात करना चाहूंगा जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब इस चीज से गुजरते हैं। ठीक है, जब हमें एक स्टोरी डालनी होती है, उस स्टोरी के साथ बैकग्राउंड में एक गाना, वो डिसाइड करने में जो वक्त लगता है ना, उसके लिए जो डिस्कशंस होते हैं, उसमें जो डिबेट्स होते हैं, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, मुझे लगता है शायद किसी कॉरपोरेट के स्ट्रैटेजी बोर्ड मीटिंग में भी इतने नहीं होते होंगे, क्योंकि भाई इंसान डिसाइड ही नहीं कर पाता। मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ कई दफ़ा हुआ है, इवन ऑफिस में भी मैंने कई बार देखा है कुछ लोग आगे पूछते कि यार इसके लिए कौन सा गाना डालूं मैं, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई मुझसे मत पूछो, मुझे खुद नहीं पता होता क्या करना है करके। मगर मैं एक चीज़ करता हूँ, जब भी मुझे कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सा साउंड कुछ मिल जाता है इंस्टाग्राम में, मैं उस ऑडियो को सेव करके रखता हूँ। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Come on, baby. Oh, sugar. Now hear me.

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: नींद के बादलों के पीछे है मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा, चेहरे पर बिखरी एक रेशमी लट, सरसराता हुआ कोई आंचल और दो आंखें हैरान हैरान सी।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलवे 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, वो यही है कि अगर आप अपने ऑफिस टाइम के दौरान मस्ती करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हंसना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, रिचार्ज और रीएनर्जाइज होना चाहते हैं, तो फिर रजिस्टर कीजिए हैप्पीनेस लाउंज के लिए। मैसेज कीजिए हमें 3311063 पर HL Space अपने कंपनी का नाम, क्योंकि हैप्पीनेस लाउंज में हम आपके वर्क प्लेस को विजिट करते हैं, फन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, आपको रिचार्ज और रीएनर्जाइज करते हैं, और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: 106.3 FM, Gio Bindas.
1: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
2: सितंबर 24th एट हॉलीडे इन दोहा, रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
1: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरोहर मिस मत करना।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओली 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewellery चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे चेन्नई के फैंस के लिए बहुत ही बढ़िया एक बात मैं बताना चाहूंगा। 2027 आईपीएल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने जहीर खान को अपना हेड कोच अपॉइंट किया है। सो जहीर खान जो है स्टीफन फ्लेमिंग को रिप्लेस कर रहे हैं, जो 16 साल के टेन्योर के बाद स्टेप डाउन कर रहे हैं, और इस 16 साल के टेन्योर में उन्हें 5 आईपीएल टाइटल्स भी मिले हैं। और जहीर खान जो है पहले ऐसे इंडियन कोच होंगे उस फ्रेंचाइजी के। उसके साथ साथ ये एक इनिशियल 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाकी जो है साल बाई साल मुझे लगता है कि वो लोग शायद रिन्यू करते रहेंगे। और ये जो डिसीजन प्रोसेस है ये सीएसके के मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथन ने बताया, और टीम के कोर लीडरशिप ग्रुप को कंसल्ट करने के बाद जो है इस डिसीजन में वो लोग आए थे। और मुझे लगता है कि ज़रूर ये काफ़ी बढ़िया एक एडिशन होगा, और जब धोनी और जहीर खान एक साथ आते हैं तो मुझे लगता है कि शायद कुछ बढ़िया हो सकता है। अब देखते हैं, शायद तला खेलेंगे कि नहीं अगले साल, मे भी शायद वो खेले, मे भी ना खेले, मे भी एक मेंटोर के रोल में आए, मगर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस न्यूज़ से। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
4: मैं हूं अनिल कपूर।

0: is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewellery चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो है आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट स्टेटमेंट भी आपको बताना चाहूंगा। मैं जेलस हूँ एस्ट्रोनॉट से। पहली बात तो यह है कि उन्हें स्पेस में जाने को मिलता है और दूसरी बात यह है कि भाई जो स्टनिंग व्यूज उन्हें देखने को मिलते हैं अर्थ के, स्पेस के, जो बढ़िया बढ़िया नज़ारे उन्हें देखने को मिलते हैं, फोटोज खींचने के मौके जो उन्हें मिलते हैं, इन बढ़िया नज़ारों को कैप्चर करने का मौका जो मिलता है, ये सब सुन के, देख के, जान के थोड़ी जेलसी तो मुझे होती ज़रूर है, क्योंकि ऐसे नज़ारे वो देख पाते हैं जिनके बारे में हम सिर्फ सोचते हैं या फिर फोटोज में देख सकते हैं। अपनी आंखों से उन नज़ारों को देखने का मज़ा कुछ और ही है। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
1: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जालों में और दीवार पर।
0: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7777000525 पर।
1: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
2: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
3: This hour is brought to you by
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर radioolive.qa सर्च कीजिए। वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, और फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सुनते हुए स्टोरी बनाकर डालिए इंस्टाग्राम पे, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कई सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं, आप उसके साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, आपको जीतने के मौके मिलेंगे, वो भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी। सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
4: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
4: Olive Recharge.
5: This hour is brought to you by
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं। सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल।

भाई धीरे धीरे टाटा बाबा गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो चुके हैं। मगर जाने से पहले यही दरख्वास्त है आपसे कि अब अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

सुनों के कहोगे ये लड़की है वाव, तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंद।

अरे वाह, शो की शुरुआत ही एक नंबर गाने से हुई है यार। इस गाने की मुझे सारे लिरिक्स पता है, और जब आपको लिरिक्स पता होते हैं ना, तो हेडफोन लगा के फुल वॉल्यूम पे सुनने का मजा ही कुछ और होता है। There you go.

बड़ी संधू वेरी हार्ड गाना अगर आपकी जिंदगी में एनर्जी की कमी लग रही है तो

दिमाग से ही गाना भी होगा, बहुत सारे गाने होंगे क्योंकि 4 घंटे में भी अब नहीं है, 9 बजे तक रहूंगी आपके साथ। बाय द वे अगले घंटे 6 से 7 के बीच में बहुत ही स्पेशल गेस्ट होने वाले, एक्चुअली 3 गेस्ट होने वाले हैं, और आज की शाम जो है वो 6 से 7 के बीच में और भी ज्यादा म्यूजिकल होने वाली है। तो वो कौन होने वाले हैं बताएंगे यार, अभी तो मैं आई हूँ यार, अभी स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो आपका आज का दिन कैसा रहा? 3311063 पर, और ये गाना भाई ट्रांस में ले जाता है आपको। आहा, फुल वॉल्यूम पे सुनिएगा अगर आप अपनी गाड़ी में है तो।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जारों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
3: एक सवाल पूछूं शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है
4: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत
1: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24-27 सितंबर नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी सिर्फ चार दिन गराफा शॉपिंग डेज
5: हेलो टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो ओलिव

0: पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make your drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: नहीं बता सकती, लेकिन मौसम का क्या आलम है वो बता सकती हूँ। अब सिमरन कौर कह रही है तो सुन ही लो यार। अभी के लिए टेम्परेचर है 34 degrees Celsius एंड फील्स लाइक 36 degrees Celsius। हाइएस्ट टेम्परेचर आज का 39 degrees Celsius था और आज का मिनिमम टेम्परेचर होने वाला है 29 degrees Celsius। ह्यूमिडिटी स्टिल 62% है एंड विंड जो है 14 km/h की रफ्तार से चल रही है। स्लोली स्लोली हम लोग बस आ ही रहे हैं। इश्क तो ये भी है।
1: लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से।
0: हवा के साथ यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है। सारे रोमांस की, सारे रोमांस का जो ऑरा है ना माइनस हो गया यार।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Ready? To learn?
2: Yes.
1: To play?
2: Absolutely.
1: To grow?
2: With Maserati.
3: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैजराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
2: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स।
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैजराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
2: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
3: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
4: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
5: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
2: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज़ फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
6: सितंबर 24th एट हॉलीडे इन दोहा, रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
2: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें, धरोहर मिस मत करना।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ
9: जबरदस्त इवनिंग, मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: सुनियो की दादी की हलचल। सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तोड़े नाल। और अगला घंटा बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि थोड़ी देर में हमारे स्टूडियो में तीन गेस्ट होने वाले हैं। और शाम के टाइम पे अगर शाम थोड़ी सी और म्यूजिकल हो जाए और आपको म्यूजिक के बारे में सुनने के लिए मिल जाए और गाने वाने जो है वो हो थोड़ा सा लाइव स्टूडियो में, तब और ज्यादा मजा आता है। मुझे ऐसी शामें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि मैं म्यूजिक से मतलब मुझे म्यूजिक इतना ज्यादा प्यार है, बस गाने नहीं आता मेरे को। मगर गाना सोचो मेरे को आता होता तो क्या ही तबाही मचा देती यार, मैं रोज गाने सुनाती हूँ आपको। बच गए आप, ठीक है। सो तीन जो गेस्ट होने वाले हैं मेरे स्टूडियो में आज शो पर, बहुत ही कमाल के होने वाले। क्या है, क्या सीन है, वो सारी बातें आपको अगले घंटे पता लगेंगी।
1: मेरा हो गया है बात है हसी ये, मेरा हो गया है आए ना यकीन।
0: और इस गाने से आजकल बड़ा प्यार है यार।

0: टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: हां जी मैं कह जी सुनियो कि दादी की हाल चाल सुप्रीम कौर है आपके साथ। और जैसे मैंने आपको बोला था कि आज मेरा शो जो है वो म्यूजिकल होने वाला है धरोहर सुरों की अमर कहानी के लिए। जो कल परफॉर्म करने वाले हैं वो सारे आर्टिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में हैं और एक साथ आज ये एकदम एक घंटा जो है वो पूरा म्यूजिकल होने वाला है। हमारे साथ हैं आलोक कटघरे जी, प्रियंका मित्रा जी और मुख्तार शाह जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच।
0: आप थोड़ा आलोक जी माइक के पास में आ जाइए क्योंकि आपको सुनना है यार तीनों को। सो आप तीनों में से किसका पहली बार कतर में आना हो रहा है?
2: मेरा।
0: ठीक है। और आपका मुख्तार जी का पहली बार कतर में आना हो रहा है और आप प्रियंका जी पहले आ चुकी हैं?
1: ये मेरा थर्ड टाइम है।
0: अरे वाह क्या बात है। और आपका सर आलोक सर?
2: ये मेरा सेकंड टाइम है।
0: ओके तो आपका सेकंड टाइम है। और कल के शो के बारे में बताइए जिसके लिए आप कतर में यहाँ पे आपकी लैंडिंग हुई है यार।
2: कल का जो प्रोग्राम है हम जो हॉलीडे इन के बॉल रूम में करने जा रहे हैं
0: जी,
2: ये इसके अंदर गोल्डन एरा के सुपर हिट गाने बॉलीवुड के और खास तौर से रेट्रो सॉन्ग्स, जो गाने अमर हैं जिनमें बहुत ठहराव है, जिनमें बहुत मेलोडीज है, तो एक बहुत ही शानदार तरीके से उन पुराने गीतों को उन तीनों आर्टिस्ट मिलकर परफॉर्म करेंगे। एंड मेरा विश्वास है कि लोगों को सालों तक ये प्रोग्राम याद रहेगा।
1: बट आई जस्ट लाइक टू ऐड कि सिर्फ ओल्ड सॉन्ग्स नहीं होने वाले
0: हैं जी,
1: उसमें नए गानों का थोड़ा सा एक जो जिंग होता है ना, यस वो भी ऐड होगा।
0: तो गानों की बात हुई, प्रियंका जी दो लाइंस हो जाए
1: ऐसा?
0: हाँ हाँ बिल्कुल।

मजे तो अब आपको और भी आने वाले हैं अगले एक घंटे तक। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास। वापस लौट रही हूँ और भी बहुत सारी बातों के साथ और बहुत सारे म्यूजिक के साथ।

0: Ready?
1: To learn.
0: Yes.
1: To play.
0: Absolutely.
1: To grow.
0: Maserati.
2: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ.
0: मिल्क, चीज, योगर्ट, लेबनीज़ एग्स.
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस.
3: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
4: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत.
5: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर. नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा. कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी. सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज.
6: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
10: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
11: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: ਹਾਈ ਗਾਇਜ਼ ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ साथ और सिमरन के साथ आज स्टूडियो में है आलोक जी, प्रियंका जी, मुख्तार जी और जो कल परफॉर्म करने वाले हैं धरोहर लेकर आए हैं सुरों की अमर कहानी और ये कल हॉलीडे इन दोहा में होने वाला है। रात को 8 बजे अपनी टिकट्स जाके क्यू टिकट्स पे जाके जरूर बुक कर लीजिएगा क्योंकि मैं भी वहीं पे होने वाली हूँ। सो आलोक जी, आपका फेवरेट वाला गाना कोई भी, चूंकि आपको परफॉर्म करना मतलब मजे आ जाते हैं यार।
1: तो मैं जो कल गा रहा हूँ गाना, जिसे मेरी एंट्री होगी
0: जी,
1: वही मैं आपको सुनाता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा है हो बचना है हसीनो आलोक आ गया।
1: प्रियंका आ गई, मुख्तार आ गई और शाम जो है वो एकदम सही हो गई है। सो मुख्तार, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब भी आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तीनों, है ना, सो एक नर्वसनेस रहती है। आप कितने, ऑफ कोर्स आप इतने सारे शोज कर चुके होंगे तो नर्वसनेस अभी भी रहती है वो सारी। और लिरिक्स भूलने वाला कोई सीन होता है क्या?
2: नहीं, एज लॉन्ग एज मेरा जहाँ तक कंसर्न लिरिक्स भूलने वाला सीन तो नहीं होता है। और नर्वसनेस अब नहीं होती है क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन हाँ एक दिल के अंदर जब शुरुआत, हाँ एक धक-धक और टेंशन थोड़ा सा तो रहता ही है फर्स्ट एंट्री से पहले।
1: और प्रियंका जी, आप मुझे बताइए कि ऑडियंस जो है वो आपको जब देखती है तो वो चीज कितनी मैटर करती है आपके लिए और कितनी जल्दी आपको वो वाइब पकड़ लेते हैं कि ओके यहाँ पे हम परफॉर्म करने हैं, कितना मजा आने वाला है, कैसे समझ लगता है
3: ऑडियंस का जो रिएक्शन होता है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो एक रिएक्शन से सब कुछ भाप लेते हैं हम लोग
1: जी।
3: So, उस एक जो वेट फॉर दैट, तो जब तक वो उनसे वो वाइब नहीं आती, उनसे वो अगर एनर्जी नहीं मिलती है तो हम भी तब तक ये रहते ठंडे रहते। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
1: तो जितने भी लोग कल आने वाले हैं, मेक श्योर कि जो भी आर्टिस्ट परफॉर्म करता है ना, बस उसको क्या चाहिए होता है, तालियां और आपकी वाह-वाह, जो कि कल जरूर मिलने वाली है। सो टिकट्स जो है वो आप जरूर बुक कर लीजिएगा धरोहर की क्यू टिकट्स पे जाके। वापस लौट के और भी बहुत सारी बातें करते हैं, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स, मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: यहाँ पे बस ना एक ही कमी रह गई है कि भाई मेरे को भी सिंगिंग आनी चाहिए यार, मैं भी गाऊंगी यार। शाम को खूबसूरत बनाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में आलोक जी, प्रियंका जी एंड मुख्तार शाह हैं। सो जैसे कि हमने आपको बताया कि आलोक जी और प्रियंका जी पहले भी कतर में आ चुके हैं, सो आप कतर के जो आपके फैंस हैं, ओके, जो कतर में कल आपका शो देखने वाले हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? जो पहली बार देख रहे हो, जो पहले देख चुके, कैसा बढ़िया आपका माहौल रहता है, कैसे एक्सपीरियंस रहा है, वो भी बताइए आप मुझे।
1: बस इतना ही कहूंगी कि जो लोग पहले अटेंड किया है जिन लोगों ने शो, उनको मालूम है कि क्या धमाका हुआ था
0: जी,
1: और क्या धमाका हो सकता है। और जो पहली बार आने वाले हैं वो बस इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आए कि योर माइंड इज गोइंग टू बी ब्लोन आउट।
0: ये और
1: सो गेट योर टिकट्स एज सून एज यू कैन बिकॉज़ यू कैन नॉट मिस दिस वन,
0: है ना। तो मुख्तार जी, आपका तो पहली बार है यहाँ पर परफॉर्म करना, कितने एक्साइटेड हो आप?
2: नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ। बहुत कुछ, ये मेरे साथी जो आर्टिस्ट आए हैं इनसे मैंने बहुत कुछ सुना और एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड खूबसूरत ऑडियंस के साथ एक खूबसूरत शाम और स्टेज के बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट प्रियंका और आलोक साथ में जब हमारे हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ सुपर हिट प्रोग्राम।
0: ओके, आलोक जी कितनी, मतलब आने से पहले कितनी प्रैक्टिस हुई और आज कितने बजे लैंड किए हो आप लोग?
3: हम तो सुबह आए।
0: सुबह आए भाई, टायरिंग नहीं हो जाएगा आपके लिए?
3: तो था, लेकिन क्या है, यहाँ का माहौल मैंने भी देखा है। सात साल पहले मैं यहाँ आया था और मैं आया था हमारे लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर आनंद जी यानी कल्याण जी, आनंद जी के, आनंद जी के साथ मैं आया था और एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था और जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स था, बिलीव नहीं करोगी, हम लोग माइक चेक कर रहे थे, मुझे आज भी याद है, सात साल पहले की बात को बता रहा हूँ, माइक चेक जो कर रहे थे ना हम लोग, उसमें इतनी भीड़ जमा हुई थी तो टिकट्स मिलना मुश्किल था, हाउस पैक फुल, एकदम फुल हाउस था और लोग भी बाहर खड़े थे। और वो उस प्रोग्राम में आज भी मुझे याद है, आनंद जी इतने, आनंद जी एक्चुअली शो में वो खाली बैठने वाले थे लेकिन उन्होंने जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखा ना दो, तो वो इतने एक्साइटेड हो गए कि 90% गाने उन्होंने हमारे साथ गाए। मीन्स अगर मैं पहला अंतर गा रहा हूँ ना तो बोलते थे लोग दूसरा अंतर में गाऊँ, हर एक सिंगर के साथ उन्होंने पूरे शो में पूरे गाने गाए।
0: माय गॉड, तो आप लोग समझ रहे हो टिकटें जो है वो अभी भी हो सकता है कि आपको ना मिले, अगर आपने टाइम पे बुक ना करी तो फिर क्यों टिकट्स पे जाके अपनी टिकट्स जो है वो बुक करवा लीजिए एंड वापस लौटती हूँ। और इन तीनों का एक्सपीरियंस सिमरन कौर के साथ कैसे रहा वो तो पूछना बनता है यार। सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
3: फॉर्मल शर्ट लेने का प्लान है और चाहिए प्रीमियम ब्रांड
4: तो नेस्टो गराफा में मिल रहा है जबरदस्त ऑफर दो शर्ट सिर्फ 59 रियाल में या चार शर्ट जस्ट 99 रियाल में और हाँ जहाँ एक शर्ट के लिए आपको 59 रियाल देना पड़ता है वहीं चार शर्ट्स अब सिर्फ 99 रियाल में ओनली विद गराफा शॉपिंग डेज
3: तो इस वीकेंड अकेले मत जाना अपने फ्रेंड्स को भी साथ ले जाना नेस्टो हाइपर मार्केट गराफा
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
8: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

सो दोस्तों धरोहर सुनो की अमर कहानी कल रात 8 बजे हॉलीडे इन में होने वाली है। क्यू टिकट्स पे जाके टिकट्स बुक कर लो क्योंकि वहां पर होने वाले हैं आलोक जी, प्रियंका जी और मुख्तार जी। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे गाने हमने गाए और जाने से पहले एक गाना आप तीनों में से कौन गाना चाहेगा, ये तीनों अगर कोई एक गाना गाना चाहेंगे तो वो कौन सा होगा?

0: माय गॉड मजा आ गया यार. लेकिन जितना मजा मेरे को आया है, मैं आप तीनों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको भी सिमरन कौर के शो में जबरदस्त इवनिंग्स में और रेडियो ऑलिव के स्टूडियो में कितना मजा आया, बताओ जरा. आप बताइए आलोक जी पहले.
1: सेनोरिटा, जब सिमरन आपका नाम आता है तो ये हमारे शाहरुख जी की जो लाइन है ना, सेनोरिटा तो आएगी. और जहाँ जब आप जब इंटरव्यू लोगे, अगर लोगे तो ऐसा लगेगा इंटरव्यू चलता रहे.
0: प्रियंका जी आप बताइए.
2: नींद की कमी, थकान जो थी ना जब हम लोग आए
0: जी,
2: लुकिंग एट यू एंड लुकिंग एट योर एनर्जी, वो सब दूर हो गई.
0: अरे यार,
2: तुम जितना भी बोल पा रहे, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर एनर्जी कि हम आपसे एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं. माइंड ब्लोइंग.
0: थैंक यू सो मच. बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में मुख्तार जी. आपके बोलने की कमी रह गई है
3: बस. मैं तो रेडियो ऑलिव का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिनके बदौलत मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आकर यहाँ के लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ. और सिमरन जी, आपका प्रोग्राम, इतने सारे मैंने रेडियो इंटरव्यू किए हैं, यू आर सो पॉजिटिव, सो मोटिवेशनल, एंड यू इट सीम्स लाइक यू लिविंग योर लाइफ बिंदास.
2: थैंक यू सो मच फॉर द एंटायर रेडियो स्टेशन. वेरी स्वीट, बहुत वार्म्थ लगा यहाँ पे.
0: बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए फिर कल आपसे मिलते हैं स्टेज पर, बड़ा मजा आने वाला है. कांट वेट यार. आप लोग भी क्यू टिकट्स पे जाके टिकट्स बुक कर लीजिए. कल रात 8 बजे हॉलीडे इन में मिलते हैं. धरोहर आपके लिए, सुरो की अमर कहानी. मेरा धरोहर सही है, मेरा पंजाबी में धरोहर निकल जाता है यार. मेरे जितने लिसनर्स हैं समझते हैं भाई, जो मेरी हिंदी है वो आधी पंजाबी है मेरी. चलो फिर आती हूँ थोड़ी देर में.
4: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर. ये गाना

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी। सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
4: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
5: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
1: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
6: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा, रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
1: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरोहर मिस मत करना।
0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो।
2: नाम या दाम?
3: नाम।
2: Money follows, my brother.

0: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
1: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
2: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन। गराफा शॉपिंग डेज।
3: Hi Radio Olive 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Akshay Kumar.
6: Hi, this is Anushka Sharma.
7: And I'm Ashwin Varsi.
8: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: आते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

अगर आप लाइफ में कुछ भी चाहते हैं ना और ड्रीम कर रहे हैं कुछ बड़े का लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये गाना सुनिए यार, अच्छा है ये आपके लिए। ये आपको एनर्जी देता है, मोटिवेशन देता है, पॉजिटिविटी देता है।

ऐसा बस इतना सा ख्वाब है। लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये ख्वाब बहुत बड़ा है। ख्वाब देखो यार, ऊपर वाला जो है ना वो आपकी हेल्प जरूर करता है। ऊपर वाले को पहले आप ये तो दिखाओ कि आप ये चीज चाहते हो, फिर वो क्या बड़ी और क्या छोटी ऊपर वाले के लिए कोई चीज थोड़ी होती है। सो ये बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जावेद अख्तर ने जब ये गाना लिखा ना तो शाहरुख खान पे ये गाना फिल्माया गया, तो एक तरीके से उन्होंने शाहरुख खान का फ्यूचर जो था वो इस गाने के अंदर लिखा था। किस तरीके से, देखो यार, एक तो वो जिस इस गाने में क्या क्या बोला गया, यस बॉस के इस गाने में, कि वो मतलब पूरी दुनिया पे छाना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं, बस इतना सा ख्वाब है और इतनी बड़ी बात है। लेकिन ये ख्वाब बहुत इतना सा है क्योंकि ऊपर वाला जब आपको चीजें देता है तो वो बड़ा छोटा तो ऐसे नहीं देखता है, आप ख्वाब देखिए वो पूरा करेगा। तो वही शाहरुख खान का ख्वाब जो है वो पूरा किया, ओके, एक तरीके से इस गाने ने मैनिफेस्ट हुआ इस गाने के थ्रू। और ये गाना जो शाहरुख खान का घर मन्नत है उसके सामने शूट हुआ था, लेकिन बात ये है कि तब शाहरुख खान मन्नत के ओनर नहीं थे। तो देखा, मैनिफेस्टेशन का जादू, बेबी। अब शाहरुख खान की बात हो रही है तो

0: थोड़ी देर में तैयार हो जाइए रियलिटी चेक के लिए।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स, मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

31 मिनट 22 सेकंड स्टूडियो घड़ी पे हो चुकी है। सिमरन कौर आपके साथ है, ठीक हो?

0: आरजे सिमरन के साथ।
1: मतलबी लोग जो हैं वो हम सब अपनी अपनी लाइफ में जो है वो देखते हैं, सुनते हैं, हमारी जिंदगी में आते हैं, वो हमको एक लेसन जो है वो जरूर देके जाते हैं। मतलबी लोग ये होता है कि जब तक उनको आपसे कोई मतलब रहता है, जब आप उनके कोई काम आ सकते हो, तो उनसे अच्छा आपकी जिंदगी में कोई नहीं है। लेकिन जब उनको आपकी जिंदगी से मतलब नहीं रहता है, तो उनसे बुरा इंसान जो है, मतलब आपसे बुरा इंसान उनकी जिंदगी में फिर कोई नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे इंसानों को पहचान भी लेते हैं कि ये मतलब है जब तक है, लेकिन somehow आपका दिल जो है वो नहीं मानता है, क्योंकि आप उस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आप बहुत ज्यादा केयर करते हो, है ना, आपका बॉन्ड वैसा है आपकी तरफ से, लेकिन सामने वाले की तरफ से जो है वो नहीं होता है। सो आई होप हम में से किसी को भी हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान ना मिले जो कि सिर्फ और सिर्फ मतलब निकालना चाहता है। यार वापस लॉटरी नेम गेम खेलने वाली हो, तैयार हो जाइए।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
3: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
4: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: Zabardast evening make you drive golden with
8: biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: दीपिका पादुकोण रेडियो ओलिव 106.3
1: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

योगिता दी की हाल चाल, सत श्री अकाल। सिमरन कौर थोड़े नाल 7:48 स्टूडियो की कड़ी दे हो चुके ने एंड इट्स टाइम। ओके, नेम गेम में क्विकली अब आप लोग मुझे अपने नाम बता दीजिए, क्योंकि मैं आपका नाम अभी के अभी रेडियो पे ले दूंगी, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हो तो आपको अपना नाम सुनने में अभी अच्छा लगेगा ना। सो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311106 3। जी हाँ, 3311106 3 पर सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजिए। चलिए अब मैं नाम बोलने स्टार्ट कर रही हूँ। फैजल, संदीप, रूबिल, सईद, आसमा, श्रुति, इद्रीस, मरिया, बॉस्को, इस्माइल में ऑलरेडी आपका नाम ले चुके हैं आईगल, पटेल जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रूबल जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, यम जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, मुसाफिर जी थैंक यू सो मच, अरसलान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, कृति जी थैंक यू सो मच, लतीफ़ उल्ला जी थैंक यू सो मच, तौसी जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। हाय मत लिखो दोस्त, अपना नाम लिखना है। पुष्पा थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, आदित्य दिवाकर जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रियान जी थैंक यू सो मच, हमजा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, हलीफ जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, शब्बीर जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, खेमराज जी, आदिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू होने वाला है दोस्तों, फिर मत कहना हमारा नाम नहीं बोला आपने, नाम आप लिख के भेजिए 3311106 3 पर। कामरान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सुनीता जी थैंक यू सो मच, मदन जी थैंक यू सो मच, जुल्फी जी थैंक यू सो मच, संधु जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, ओ माय गॉड, अदील जी, अदील हमजा जी थैंक यू सो मच, श्रीनिवास जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए बेटा, अब आप थैंक यू लिख सकते हो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बनाना मत भूलना। अगले घंटे खेलते हैं यार एक चुटकी सॉन्ग। यार ये गाना ना पता नहीं सुबह शाम मेरे जहन में चल रहा है। इनफैक्ट ये गाना मेरे से तब से जुड़ा हुआ है जब मैं इंडिया गई थी पहाड़ों में, और ये गाना मैं सुबह शाम सुनती थी। और ये गाना मैं कब सुनती थी, ऐसे जो मेरा रूम व्यू था ना उससे बाहर से पहाड़ दिखते थे, और पहाड़ दिखते थे और बादल पहाड़ के ऊपर आए हुए, और ये गाना जोर जोर से मेरे रूम में बजता था। ये गाना मेरे दिल में ना घर कर गया, ऐसा लगता है कि ये गाना ना पूरे इमोशंस को ऐसे निचोड़ दिया है इस गाने में। यार खोसला रघु, बहुत जल्दी इनका इंटरव्यू करने वाली हूँ यार, बड़ा मन है इनसे बात करने का।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: यू घर का क्या हाल बना रखा है तुमने? तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
2: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर।
1: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
3: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
4: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
1: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स, और 600+ पार्किंग स्पेस भी। सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Ready? To learn?
2: Yes.
1: To play?
2: Absolutely.
1: To grow?
2: With Maserati.
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
2: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स।
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
4: Hi Radio Olive.
5: Radio Olive.
4: 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
5: I'm in number one,
6: Radio Olive. Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
3: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

दोस्तों अगर बाहर चांद दिख रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड चांद वही है यार, एक दोस्त जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता, जिसको देखते ही दिल खुश हो जाता है। और ये गाना उसी को डेडिकेट कर रही हूँ, मेरे चांद को। अगर दिख रहा है तो साथ वीडियो बना के भेजो ना यार।

0: चांद मेरा दिल। फहीम अब्दुल्ला की आवाज
1: जबरदस्त
0: सुनियो कि दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर तुहाडे नाल।

0: किसी का हर बार होगे, जीना जरूरी नहीं है यार, अकेले भी जिंदगी अच्छी खासी कट जाती है।
1: रेडियो ओलिव पर
2: बहुत बढ़िया, बहुत।
0: चलो एक चुटकी सॉन्ग में आपको सुना रही हूँ और आप मुझे बताइए ये कौन सा सॉन्ग है। मेक श्योर कि आप अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए ताकि आप 10 से 15 बार सुन सके, जितनी बार भी आपका मन करे, जब तक आपको नहीं समझ लग रहा है कि ये गाना कौन सा है। कौन सा गाना आपको लग रहा है और वॉइस नोट के थ्रू आप गाना गाना चाहें या बोल के बताना चाहें, दोनों तरीके से बता सकते हैं, लेकिन एक तरीका आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, वो है लिख के भेजने वाला। जवाब लिख के नहीं भेजना, वॉइस नोट भेजना है। हे सिमरन, अपना नाम बताइए और भेज दीजिए गाने कौन सा है। 3311063 पर एक बार वापस से। सुंदरी रेडियो ओलिव गोर के जरिए जियो बिंदास।
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai. Malai maar ke. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
2: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
3: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप जस्ट

0: स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है और हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ओलिव पर
2: बहुत बढ़िया
0: और एक चुटकी सॉन्ग था ये चलिए आप लोगों के जवाब सुनते हैं
3: हाय सिमरन इट इज प्रियंका हियर इट इज तुम तक
0: ओके थैंक यू सो मच थोड़ा गा भी देती डार्लिंग मजा आ जाता यार
4: Hey Simran,
0: Hi.
4: Good evening. This is the movie Tum. This is the movie for Ranjana, and the song name is Tum Tak.
0: Thank you so much.
4: It was done by this Dhanush, no?
0: बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल सही बोला यार सही जो है वो गाना आपने पहचाना ऑलवेज यार आपकी बॉलीवुड की नॉलेज जो है बड़ी सही है
5: मदहोश दिल की धड़कन चुप सी तन्हाई
0: और इस तन्हाई में ऐसे गाने सुनना होए होए होए मजे आ जाते हैं अगला गाना सुनो प्यार तो आपसे बहुत सारा है यार एकदम 100 किलो वाला

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: चलो फिर कल शाम को 5 बजे फिर से होती है मुलाकात। अकेले नहीं आऊंगी, वीकेंड साथ में लेके आऊंगी। सो खाते में ऐश कर दे रो चेहरे दे वड्डे वाली स्माइल को, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour.

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ओलिव 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. जैसे जैसे वीकेंड पास आ रहा होता है वैसे वैसे खुशी जो है वो और ज्यादा बढ़ती चली जाती है. आई नो, मतलब हफ्ते में 5 दिन काम करने के बाद वो 2 दिन जो है वो कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, बट स्टिल वो 2 दिन ना आपको बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, आपको रीसेट करके चले जाते हैं. सो वी विल टॉक अबाउट दैट, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आदर्श बालक से लंडन फैशन वीक तक की. यस, आप में से कितने सारे लोगों ने बचपन में वो आदर्श बालक वाला कार्टून देखा होगा, वही बच्चा जो टेक्स्ट बुक्स में इतना परफेक्ट होता है कि देखकर लगता है भाई ये बच्चा इंसान है या स्कूल मैनेजमेंट का अंडरकवर एजेंट. मतलब सुबह जल्दी उठता है, टाइम पे सारी चीज़ें करता है, पढ़ाई करता है और पेरेंट्स की बात मानता है. यानी वो बच्चा जैसे देखकर हमारे पेरेंट्स कहते थे देखो इससे कुछ सीखो. लेकिन अब मज़ेदार बात सुनिए, वही फैमिलियर इंडियन स्कूल रूम कैरेक्टर ना अब लंदन फैशन वीक तक पहुंच गया है. इंडियन फैशन लेबल जो है लव बर्ड्स, उसने अपने स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन में आदर्श बालक की इमेजिनरी को फैशन में रीपेंट किया है. मतलब पूरा उसको वहाँ पर दिखाया है, यानी जो कैरेक्टर कभी हमारे स्कूल पोस्टर और चाइल्डहुड मेमोरी का हिस्सा था वही अब इंटरनेशनल रनवे पर दिखाई दे रहा है. और आई वॉज लाइक, मुझे ये सिर्फ फैशन स्टोरी नहीं लगता, क्योंकि एक चीज़ को 3 जनरेशन 3 अलग तरीके से देख रही है. किसी के लिए चाइल्डहुड मेमोरी है, ठीक है, किसी के लिए मीम है और किसी के लिए फैशन इंस्पिरेशन. यानी बचपन की चीज़ें कभी सच में पुरानी नहीं होती, बस उनका अलग वर्जन हमें कहीं और देखने को मिल जाता है. सो आप मुझे बताइए कि आपने आदर्श बालक देखा है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान, नंबर इज सेम 3311.

0: हेलो, ये है मिडनाइट लाउंज,
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सो मिडनाइट लाउंज में अब थोड़ा बॉलीवुड वाला किस्सा सुनाती हूँ। मीका सिंह ने अपने स्टार्टिंग बॉलीवुड डेज में एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट शेयर किया था। उनके पास हमर थी और वो उसी प्रोड्यूसर से मिलने जाया करते थे और वही गाड़ी चलाते थे। अब सुनने में तो बड़ा ग्लैमरस लगता है ना, लेकिन सिंगर शान ने उन्हें एक दिन समझाया, भाई प्रोड्यूसर से मिलने हमर से मत जाया करो, ऑटो से जाया करो। क्यों? क्योंकि सामने वाले को ये इंप्रेशन नहीं मिलना चाहिए कि आपको काम की ज़रूरत ही नहीं है। और मीका ने बताया कि उस टाइम पर एक लाइव शो में उन्हें लगभग बहुत ही कम पैसे मिलते थे, मतलब अगर मैं बात करूँ इंडियन रुपीज़ में तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़। यानी स्ट्रगल के दौर में भी वो अपनी स्टाइल में ही रहते थे। अब यहाँ मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ बॉलीवुड की कहानी नहीं है, हम सबके साथ होता है। पहली मुलाकात में हम सामने वाले को देखते हैं, उसके कपड़े कैसे हैं, ये बात कैसे कर रहा है, कॉन्फिडेंस है या फिर नर्वस है, और कई बार असली इंसान को जानने से पहले ही हम ओपिनियन बना लेते हैं। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। सो ये जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समवेयर। सो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, ये फर्स्ट इंप्रेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं। सो कभी किसी को देख कर आपने गलत इंप्रेशन बनाया है? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर इज सेम 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

लेडीज, ये जो बात है ये सिर्फ आपके लिए है और शायद उन लोगों के लिए भी जिनके घर में कबर्ड्स में खोलते ही ना बैग्स के बाहर आ जाती है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। फैशन वर्ल्ड में इन दिनों एक इंटरेस्टिंग आइडिया चल रहा है, क्या एवरीडे लाइफ के लिए आपको सच में ढेर सारे हैंडबैग्स चाहिए? एक प्रैक्टिकल अप्रोच कहती है कि बस तीन अच्छे बैग्स काफ़ी हो सकते हैं, एक वर्क के लिए, एक कैजुअल आउटिंग के लिए और एक ऐसा जो थोड़ा ड्रेसी हो और इवनिंग में काम आ जाए। और सुनने में बहुत ही सेंसिबल लगता है, लेकिन असली सवाल है कि क्या हम सेंसिबल हैं या फिर थे? हमारे पास एक बैग होता है जो 3 साल पहले खरीदा था, यूज़ सिर्फ 2 बार किया था, लेकिन फेंकेंगे तो नहीं, क्योंकि अरे ये तो बहुत अच्छा है, कभी काम आ जाएगा, और वो कभी पिछले 3 साल से आया ही नहीं। लेकिन फैशन का नया मूड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सिर्फ ज़्यादा चीज़ें खरीदना ही स्टाइल नहीं माना जाता, बल्कि प्रैक्टिकल और वर्सेटाइल पीसेस की बात ज़्यादा होती है। सो आज रात अपने वार्डरोब पर ईमानदारी से नज़र डालिए। आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप देखते हैं और बहुत रख देते हैं लेकिन इस्तेमाल लगभग कभी नहीं करते? यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान, नंबर सेम 3311106 3। स्टे ट्यून्ड, जियो दिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज।
0: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

भाई आप थोड़ा किताबों की दुनिया में चलते हैं। इमेजिन कीजिए एक छोटी सी बुक स्टोर जहां आप सिर्फ किताब खरीदने नहीं जाते, आप वहां बैठते हो, थोड़ी देर पढ़ते हो, कॉफी लेते हो, किसी स्ट्रेंजर से बात की जाती है और शॉपकीपर आपको देखकर कहता है कि आपके लिए एक नई किताब आई है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। सो अचानक वो दुकान सिर्फ दुकान नहीं रह जाती, वो आपकी फेवरेट जगह बन जाती है। इसी तरह से कोजी बुक सेंटर्ड जो स्टोरीज हैं इन दिनों फिक्शन में काफ़ी ज़्यादा पसंद हो रही हैं। बुक स्टोर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, कहानी का एक पूरा कैरेक्टर जैसा फील होता है और शायद हमें ऐसी जगहों की ज़रूरत भी है क्योंकि हर जगह हमें कुछ बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां आप बस थोड़ी देर रह सकते हो। सो मिडनाइट लाउंज का आज का सवाल है कि अगर आपके शहर में एक ऐसी बुक स्टोर हो जहां आप बिना कुछ खरीदे बस बैठ सकते हैं, क्या आप उसके रेगुलर कस्टमर बनेंगे? सो बेसिकली ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरी हैं जहां पर किताबें मिलती हैं, आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप वहां जाइए, पढ़िए, वापस रख दीजिए, कोई आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज।

मतलब यार कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग ब्लश ब्लाइंड हो गए, ऐसा लगता है कि पूरे जो उनके चीक्स हैं उसे वो कलर कर देते हैं, लेकिन अभी वापस से चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। मतलब मेकअप की दुनिया भी कहाँ कब क्या करे कुछ पता नहीं चलता। मैंने मेहनत तो बहुत की है लेकिन दिखना चाहिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, और यही ब्यूटी ट्रेंड की मज़ेदार बात है। कभी कॉन्टोर इतना शार्प कि चेहरा बिल्कुल मैप जैसा लगे, और फिर नो मेकअप मेकअप, फिर ब्लश, और अब फिर एंटी ब्लश। लेकिन ऑनेस्टली ट्रेंड कोई भी हो, सबसे अच्छा मेकअप वही है जिसमें आप खुद को देखकर कहें कि हाँ आज मैं अच्छी लग रही हूँ। बाकी इंस्टाग्राम को थोड़ी देर बाद देखते हैं। सो बेसिकली मैं अगर अपने मेकअप की बात करूँ तो आई वॉज नेवर कॉन्फिडेंट कि मुझ पर ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो मैं तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती नहीं। लेकिन यू टेल मी, क्या आप इस ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान, नंबर इज 8333111063। स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

देयर वॉज वन टाइम जब इंटीरियर डिजाइनर का मतलब हुआ करता था कि सब कुछ एकदम परफेक्ट, सोफा एकदम सीधा होगा, टेबल पर सिर्फ 3 चीजें होंगी, कुशन बिल्कुल बराबर होंगे और कोई चीज अपनी जगह से हिली तो लगता था कि घर का एस्थेटिक खराब हो जाएगा। लेकिन 2026 का इंटीरियर मूड थोड़ा सा चेंज है। अब लिव्ड इन इंटीरियर यानी कि ऐसा घर जो सच में किसी इंसान का घर लगे, थोड़ा इम्परफेक्ट, थोड़ा पर्सनल, अलग अलग चीजों का मिक्स, इस तरह के स्पेसेस ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। मतलब टाइम के साथ ना चीजें बदलती रहती हैं और ऑनेस्टली मुझे ये बहुत रिलेटेबल लगा, क्योंकि घर कोई शोरूम तो है नहीं जहां सभी चीजें एकदम लाइन से लगी हो, कभी चाय का कप टेबल पर हो ही ना। सो होगा भाई, अगर आप रहते हो तो होगा। सो बेसिकली होगा क्या, जब ऐसे घर में आप रहोगे तो कभी किताबें जो है वो सोफे पर रह जाएंगी, कभी ब्लैंकेट फोल्डेड नहीं होगा। और वही तो घर है यार, परफेक्ट घर फोटोग्राफ में अच्छा लगता है लेकिन इम्परफेक्ट घर में जिंदगी होती है। सो यू टेल मी, आपके घर में वो कौन सा कॉर्नर है जो बिल्कुल इंस्टाग्राम परफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपका फेवरेट है? नंबर इज सेम 3311063। मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

अब एक बिल्कुल फ्रेश स्पोर्ट्स स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज। इंडिया और जापान की मेंस क्रिकेट टीम ने 22 सितंबर को यानी कि अभी कल ही 2026 को पहली बार T20 इंटरनेशनल में एक दूसरे के सामने देखा। ये मैच ना जापान के एक स्टेडियम में था और इंडिया जापान डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन से भी जुड़ा हुआ था और मैच भी ऐसा कि कहानी बन गई। बारिश की वजह से पूरा मैच जो है सिर्फ 5-5 ओवर का हो गया। इंडिया ने 32 रन बनाए और जापान ने पूरी कोशिश की लेकिन आखिर में इंडिया सिर्फ 2 रन से जीत गया। मतलब T20 था लेकिन इतना छोटा कि ब्लिंक किया और हाफ मैच खत्म। लेकिन मुझे इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो रिजल्ट नहीं लगती। इंटरेस्टिंग ये है कि जापान जैसी कंट्री ने क्रिकेट अभी अपनी जगह बना तो ली है और इंडिया के लिए क्रिकेट ऑलमोस्ट इमोशन है। एक कंट्री जहां बच्चा शायद बैट लेकर बड़ा होता है और दूसरा जहां बेसबॉल की बहुत बड़ी कल्चर है। लेकिन खेल की खूबसूरती यही है, किसी गेम को प्यार करने के लिए आपको उसी देश में बॉर्न होना, पैदा होना जरूरी नहीं है। सो इफ यू लाइक क्रिकेट देन आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज
0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

और अब मिडनाइट लाउंज की रात को एक थोड़ा अलग सवाल के साथ खत्म करते हैं। मेरे जाने का टाइम हो गया है, लेकिन जाते जाते आई हैव समथिंग फॉर यू। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। आज हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, कॉफी की फोटो, डिनर की फोटो, सनसेट की फोटो, कॉन्सर्ट में पूरा फोन ऊपर, और कभी कभी तो सामने वाला इंसान कम दिखाई देता है, उसका फोन ज्यादा। लेकिन सोचिए, अगर आज रात आपको पता है कि इस शाम की एक भी फोटोग्राफ नहीं बनेगी, नो इंस्टाग्राम स्टोरी, नो स्टेटस रील, बस आप हैं और ये शाम है, तो क्या आप इसे थोड़ा अलग तरीके से जिएंगे? शायद हम मोमेंट्स को कभी कभी इसीलिए रिकॉर्ड करते हैं कि हमें डर लगता है कि हम उसे भूल जाएंगे, लेकिन मेमोरीज ऐसी होती है जिनकी कोई फोटो ही नहीं होती, फिर भी सालों बाद अचानक याद आ जाता है। किसी गाने का, किसी आवाज़ का, या कोई भी चीज़ आपको याद आ सकती है। सो अच्छी यादों को हमेशा कैमरे की जरूरत नहीं होती, आप उसे कभी भी अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। नो फोटो नो स्टोरी, बस मेमोरी। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

जब जब तू मेरे सामने आती है मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। तू मेरा प्यार, मेरी पूजा, मेरी जिंदगी है। आ देख, देख तू मेरा पागलपन, कि मैं हर चेहरे में तेरा चेहरा तलाश करता हूं। ये मुझे क्या हो गया है, क्या कहूं, बस तुझे छूने को दिल करे, तुझे पाने को दिल करे।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

Olive 106.3 FM Geo Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त हिट.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जिया बिंदास।
2: चांदनी